ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर आप हमें सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज बुधवार है, शक संवत 1948, वैशाख माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद

शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात परम सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मो दयापरः। अर्थात हमारे जीवन में शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है श्याम रंग से कि श्याम रंग में पिया मोरी रंग दे चुनरिया। पिया कौन है? पिया भी श्याम है। तो यहां

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से आप सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान भाग 194। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनेगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी आज सुनेगा प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से सुनेगा त्रिवेणी। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार गिरीश कर्नाड पर।

सुबह 10 बजे से सुनवाएंगे आपको पिटारा, इसके अंतर्गत सैली लॉयड के सितारे, इसके अंतर्गत सुनेगा पार्श्व गायिका कमल बरोट से कमल शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से रंग तरंग, यादों की महफिल, यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12:05 से, सुरीला सफर दिन में 1 बजे से। दोपहर 2 बजे से सुनेगा त्रिवेणी, प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2:30 से, सखी सहेली, इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे। आज के विषय हैं विश्व मधुमक्खी दिवस, भाषाओं से जुड़ा संस्कार, साड़ियों का संसार, तंचोई साड़ी, शब्द हमारा, विचार आपके के अंतर्गत सद्भावना, व्यंजन के अंतर्गत ठेकुआ और दाल पीठा, संवादक हैं मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से सुनेगा पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से, शाम 5:30 से सुनेगा तराने नए पुराने।

शाम 6:30 से सुनेगा झरोखा, 6:35 से सुनवाएंगे संध्या रंजन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम सुनेगा जयमाला शाम 7 बजे से, शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनवाएंगे आपको राग अनुराग। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा प्रहसन खरीदा हुआ दुख, लेखन शोभा रस्तोगी का, निर्देशन दुर्गा मेहरोत्रा का। और रात 8:15 से चित्रलोक। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे।

रात 9 बजे से रात 10 बजे से सुनेगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से ढलती जाए रात और रात 11 बजे से रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी पलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: नमस्कार। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला के माध्यम से हम भक्ति रस की वर्षा से भीग रहे हैं और विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप जलोटा जी। नमस्कार अनूप जी।
2: नमस्कार जी।
1: गंगा जमुना के तट पर लगातार आपके स्वर में और आपके पिताजी के गाए भजन गूंजते रहते हैं, लेकिन आज जगत में बहुत ही कोलाहल है। जो संस्कार भजनों के हमें मिले वो नई पीढ़ी से नदारद है। ऐसे में भक्ति संगीत की ये रसधारा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, आप हमें बताएं। और कबीर के अनगिनत भजन आपने गाए हैं, तो कबीर के भजन के जरिए आप क्या संदेश देंगे सभी श्रोताओं को?
2: कबीर ने जो जो लिखा है, जो देखा है वो लिखा है। उन्होंने हमेशा समाज की सच्चाइयों को अपने भजन के माध्यम से उतारा है। तो कबीर जैसे दार्शनिक दूसरे नहीं है, कबीर जैसा यथार्थ बात करने वाला कोई नहीं है, सच्ची बात करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम कबीर को केवल कवि ही नहीं, समाज सुधारक भी मानते हैं।
1: जी जी।
2: कुछ भजन हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, जन्म तेरा बात वहीं बीत गयो, मत कर मोह तू, न जाने कितने भजन हैं। मैं आपको कबीरदास जी का एक भजन सुनाता हूँ।
1: जी।

इस भजन के माध्यम से कबीर ये समझा रहे हैं कि अलग अलग अवस्था में मनुष्य अलग अलग काम करता है, एक काम करना भूल जाता है, भगवान का नाम लेना। तो इसके भी कुछ कारण होंगे क्यों भूल जाता है। उन्हीं कारणों को समझाया है कि मनुष्य क्यों भूल जाता है भगवान का नाम लेना।

0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा हमें। अनूप जी, आपकी भक्ति रचनाओं में जीवन दर्शन समाहित है और वो दर्शन जैसे मन में समा जाता है। तो इस वक्त कोई ऐसा भजन याद आ रहा है आपको, हमारे श्रोताओं को सुनाएं कुछ पंक्तियां?
1: कबीर को सुनाता हूँ
0: जी।

0: तो श्रोताओं, कबीर की इस रचना में हम डूब गए थे, खोसे गए थे। ऐसी लागी लगन, अनूप जलोटा से बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी नवी कड़ी। अब आज की ये कड़ी बस यहीं तक।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

0: राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत, इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में बरखा फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

हमारी अगली पेशकश मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने, इस फिल्म से भरत व्यास हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी वीर जी शाह।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में बाप बेटे इस फिल्म का गाना। इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

0: से इतवार के।
1: मीठे बाल चलाने वाली मेरी नींद चुराने वाली मेरे दिल की तरफ से मैंने मैंने
0: ओ मेरे दिल में आने वाले मुझको प्यार सिखाने वाले मेरे दिल की तरफ से मैनी मैनी मैनी मैनी थैंक ला ला ला।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए सुरैया मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और हुसन लाल भगत राम का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम शमा परवाना।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गाना। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं SD बर्मन।

0: गाड़ी की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ।
2: किक किक किक किक।
1: टेपनिंग पहिया। अरे पंपिंग।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मन्ना डे, सुलोचना कदम और साथियों की आवाज़ों में सुरंग फिल्म से शिवन रिज्वी के हैं बोल और तर्ज बनाई है पंडित शिवराम कृष्ण ने।

0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: दी। हाँ? ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका?
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में श्री 420 इस फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

लीजिए अब सुनिए हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में हाउस नंबर 44। इस फिल्म का गाना साहिर लुधियानवी हैं गीतकार और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में बारादरी फिल्म का गाना। खुमार बाराबंकवी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शौकत दहलवी नाशाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए मजरो सुल्तानपुरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेज 55।

अगला गाना हमने लिया है यास्मीन फिल्म से, इसे गाया है लता मंगेशकर और तलत महमूद ने, लिखा है जानिसार अख्तर ने और संगीत से संवारा है सी रामचंद्र ने।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश हेमंत कुमार गीता दत्त और ठाकुर की आवाज़ों में मुनीम जी फिल्म से। साहिर लुधियानवी हैं गीतकार और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

0: गाइए ना।
1: दिल की उमंग है जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।
1: पामा पाधा पागा सपा, दिल की उमंग है जवान, गाइए।
2: दिल की उमंग है जवान,
0: बहुत अच्छा।

0: கராவே.
1: इस गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ. अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए. नमस्कार.

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
4: हैं। Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
5: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
8: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
9: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
10: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल

0: कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुँच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज बुधवार का दिन है और तारीख है 20 मई। कैलेंडर की तरफ आप देखेंगे तो सोचेंगे ये कौन सा खास दिन है, लेकिन आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खियों का दिन, मतलब इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बताता हूं कि मधुमक्खियां हमारी जिंदगी के लिए और इस दुनिया की सलामती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मधुमक्खियां परागण करती हैं और ये मधुमक्खियां हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। सन 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था और ये दिन मनाया जाता है मधुमक्खी पालन के जन्मदाता एंटोन जानसा की जयंती के मौके पर। मधुमक्खियों को बड़ी तेजी से खत्म किया जा रहा है और इससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूल पौधे और फसलें नहीं होंगी। खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए, साथ में सोचिए मीठा बोलने के बारे में।

बचपन में हम सबको किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि मधुमक्खियां फूलों का रस लेती हैं और पराग के कणों को यहां वहां बिखेर देती हैं। इस तरह से नए पौधे पैदा होते हैं और इसी तरह से दुनिया में हरियाली बढ़ रही है, फूल बढ़ रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं। पर आजकल

जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे मधुमक्खियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराता चला जा रहा है और इसका सीधा सीधा असर हमारे यहाँ फूलों और पौधों की विविधता पर भी पड़ रहा है। आप अक्सर ही देखेंगे कि कॉलोनियों में या ऊंची ऊंची इमारतों में मधुमक्खियों के छत्ते पड़ जाते हैं और उन्हें हटाने के लिए लोगों को बुलवाया जाता है। उसके बाद आप राहत की सांस लेते हैं कि हमने मधुमक्खियों को हटा लिया, हमें सुकून मिल गया। पर जरा ये सोचिए कि ये मधुमक्खियां पर्यावरण के संतुलन के लिए कितनी जरूरी थीं। उनकी जगहों पर आपने कब्जा कर लिया और इसलिए मधुमक्खियां आपके घरों के छज्जों पर अपने घोंसले बना रही हैं, अपने छत्ते बना रही हैं। वो कहाँ जाएंगी, इसके बारे में किसी ने सोचा? खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए और सोचिए फूलों को बचाने के बारे में, जो मधुमक्खियों की जीवन रेखा है।

20 मई का दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है और त्रिवेणी के जरिए हम आपको रोज किसी न किसी मुद्दे पर जागरूक करते हैं। आज मधुमक्खी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जरा सोचिए कि मधुमक्खियां फूलों का रस ग्रहण करती हैं और उसे शहद में बदल देती हैं। यानी मधुमक्खियों का जीवन संसार में मिठास बढ़ाने को समर्पित है। हम मधुमक्खियों से मीठा बोलना सीख सकते हैं। हम मधुमक्खियों से संसार का भला करना सीख सकते हैं। हम मधुमक्खियों से ये सीख सकते हैं कि दुनिया में बोलों की मिठास बढ़े। लेकिन ये जो मीठे बोल है ना, कई बार इनके पीछे भी कुछ बदमाशियां और चालाकियां छिपी होती हैं। और बड़े बुजुर्ग कह गए हैं

0: तूफानों से नहीं डरूंगा, हिम्मत से मैं निकल पड़ूंगा।
1: शाबाश, मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
2: आज की त्रिवेणी थी विश्व मधुमक्खी दिवस पर। ये त्रिवेणी आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग सुनी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
3: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
4: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
3: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
4: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
5: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं रेखा भारद्वाज की आवाज़ में बर्फी फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं सईद कादरी और संगीतकार हैं प्रीतम।

हमारी अगली पेशकश अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपला की आवाज़ों में टू स्टेट्स फिल्म से, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा इसे और संगीत से संवारा शंकर एहसान लॉय ने।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुखविंदर सिंह की आवाज़ में लापता लेडीज फिल्म का गाना। दिव्यनिधि शर्मा ने लिखा इसे और राम संपत ने संगीतबद्ध किया है।

0: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: आई एम हियर।
3: दीप तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
0: ऐसे

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए मीत ब्रदर्स जोनिता गांधी और जुबिन नौटियाल की आवाज़ों में ड्रीम गर्ल 2 फिल्म का गाना। कुमार के हैं बोल और सौरभ रॉय और मीत ब्रदर्स की है तर्ज़।

0: अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में 102 नॉट आउट फिल्म का गाना, सौम्य जोशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा सलीम सुलेमान ने। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 MHz पर। कुछ ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे, इससे पहले नॉर्वे में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ

0: मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के पांचवे और अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इस मौके पर श्री मोदी ने बताया कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की नवाचार रणनीतिक भागीदारी अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में चार गुना वृद्धि हुई है। 10 वर्षों में देश का बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। राज्य सरकार ने देर रात 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार एक एडीजी, 4 आईजी, 2 डीआईजी और 7 जिलों के एसपी बदले गए हैं। हरिंद्र कुमार कुमावत महावर को कोटा रेंज का आईजी बनाया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना कुचामन, टोंक, भरतपुर, नागौर और दौसा के एसपी बदले गए हैं। एडीजी लता मनोज कुमार को सिविल राइट से कम्युनिटिंग पुलिस में भेजा गया है। वहीं एडीजी हवा सिंह घुमरिया को एडीजी सिविल राइट्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजस्थान विधानसभा की स्थापना के उपलक्ष्य में चलने वाले अमृत महोत्सव के तहत इस साल 4 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये उत्सव विधायिका को समर्पित होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि अमृत महोत्सव के जरिए परंपरा, नवाचार और जनविश्वास एक साथ नजर आएगा। श्री देवनानी कल विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बोल रहे थे। राज्य में सहकारिता, उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि दवा विक्रेताओं की प्रस्तावित हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 में राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला है। और ब्यौरा दे रही हैं न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सालेहा गाजी।
2: राज्य में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में व्यापक मॉडल स्थापित किया गया है। इसके तहत 500 से ज्यादा तंबाकू मुक्ति उपचार और परामर्श केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन्हें जियो टैग कर लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 83,000 से ज्यादा स्कूलों में तंबाकू मुक्त विद्यालय परिसर संबंधी निर्देशों की पालना की गई है और तंबाकू मुक्ति के लिए 2.5 लाख से ज्यादा जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। प्रदेश में तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
0: प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा 2 पारियों में हो रही है। करौली जिले में इसके लिए 25 और बारां जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 1 दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTA की ओर से नीट UG परीक्षा 21 जून को दोबारा लिए जाने की घोषणा के बाद शिक्षा नगरी कोटा में देश भर से विद्यार्थियों की वापसी शुरू हो गई है। शहर के छात्रावासों, पुस्तकालयों और कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की चहल पहल नजर आने लगी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री खेवसर कल जयपुर से VC के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लू और तापघात, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और HPV वैक्सीन की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने और आवश्यक दवाइयां तथा कूलिंग उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर बना हुआ है। गर्म हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कल प्रदेश के 9 शहरों में दिन का पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। चित्तौड़गढ़, अलवर, पिलानी, श्रीगंगानगर, दौसा, चूरू, करौली और कोटा में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा। वहीं फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के ऊपर मापा गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आई है, किंतु तेज गर्मी का असर बरकरार है। आज दक्षिण पूर्वी भागों में और सीमावर्ती जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की चेतावनी है। श्रीगंगानगर निवासी मानव सुथार का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वे भारत अफगानिस्तान के बीच होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज में खेलेंगे। मानव लेफ्ट आर्म स्पिनर, बॉलर और बल्लेबाज भी हैं। सुथार की इस उपलब्धि से जिले भर में खुशी का माहौल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे। इससे पहले नॉर्वे में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 100.3 MHz पर सवेरे के 9:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे FM रेडियो पिंक सिटी के कार्यक्रम।

तो ये कितनी सुंदर बात है ना कि लाइफ में ऐड करने से ज्यादा सुकून भरी जिंदगी तब होती है जब आप माइनस करना सीखते हैं. जैसे कि बुरी आदतों को माइनस करना उन लोगों को जो आपका दिल दुखाते हैं और वो भी बार बार माइनस करना उन सारे सवालों को, सोच को, उन तमाम आवाजों को जो आपकी तरक्की को रोकती है. तो है ना ये कुछ तो खास है, कुछ तो बात है वाली बात. दिन है मुस्कुराता हुआ बुधवार, तारीख हो गई है मई की 20 और इस लवली मॉर्निंग में आपकी सेहत की बात, लगेगी लफ्जों की क्लास और साथ में बेहतरीन नगमों की सुनहरी सौगात लेके हाजिर हो गई हूँ. मैं हूँ वैसे मैत्रेयी आपके साथ. सलाम नमस्ते गुड मॉर्निंग जान मेरी जानेमन की हालचाल. तो पूरे 12 बजे तक बातें नगमे हम और आप रहेंगे साथ साथ. तो करते हैं शो की शुरुआत इस गजब वाले गाने के साथ. तो बस साथ रहने का, सुनते रहने का. रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM गुलाबी नगरी के गुलाबी चैनल के साथ हैं आप.

0: आनंद आई हॉस्पिटल हेल्थ इज वेल्थ के प्रायोजक हैं आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर। चश्मे को कहें बाय बाय।
1: धूल धुआं पोल्यूशन और खराब मौसम कितना कुछ सहती हैं आपकी आंखें आपके लिए। रखिए अपनी आंखों का खास ख्याल विद आनंद आई हॉस्पिटल।
2: वर्ल्ड क्लास आई केयर सॉल्यूशंस बाय पायनियर्स इन ब्रिंगिंग लेसिक टेक्नोलॉजी लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी,
1: जहां फाउंडर डॉक्टर सोनू गोयल और उनकी टीम द्वारा सिर्फ 8 सेकंड्स में स्माइल प्रो प्लस लेसिक टेक्निक से आपकी आंखों को मिलती है नई रोशनी।
2: गेट अ क्लियर विजन विद आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर, तकनीक में सबसे आगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9772097720।
3: मैत्रेय के साथ आप, टाइम हो गया एग्जैक्टली 9:15 और आज हेल्थ इज वेल्थ में बात होगी एपिलेप्सी यानी मिर्गी की। जितनी जानकारी है उससे कहीं ज्यादा अवधारणाएं हैं सभी लोगों के मन में कि किस तरह से मिर्गी को ठीक किया जाए, चाहे फिर वो रोगी को जूता सुंघाने की बात हो, उसके मुंह में चम्मच डालने की, या फिर उसको पानी पिलाने की। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि रोगी को अगर दौरा आ रहा है और ऐसा किया जाए तो उसे काफी नुकसान हो सकता है। तो बहुत विस्तार से समझने की जरूरत है कि मिर्गी रोग क्या है, किस तरह से प्रभाव होता है इसका व्यक्ति के शरीर पर, और दरअसल दौरा उत्पन्न कैसे होता है और क्या है इसका बेहतर इलाज, जानेंगे आज। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर योगेश आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर।
4: गुड मॉर्निंग
3: सर। सबसे पहले व्हाट इज एपिलेप्सी, मिर्गी क्या है और क्या हर दौरा मिर्गी का दौरा कहलाता है?
4: जी, सबसे पहले तो पिंक सिटी FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले हम आते हैं कि दौरा क्या है। हम एक तरह से मान सकते हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि एक सूचनाओं का आदान प्रदान इलेक्ट्रिसिटी की तरह करते हैं।
3: जी।
4: तो जब भी ब्रेन में कोई एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो हमारे दिमाग में होने की वजह से वो दौरा पैदा करती है, या जिसको कि हम सीजर कहते हैं। और ये सीजर्स अगर दौरे कई बार लगातार आते हैं तो उसे हम एपिलेप्सी कहते हैं या मिर्गी कहते हैं।
3: जी, तो सर हर रोग के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर हम मिर्गी के बात करें, मिर्गी के दौरे यदि किसी व्यक्ति को आ रहे हैं तो इसका क्या कारण रहता है?
4: जी देखिए, वैसे तो कई बार मिर्गी के जो दौरे हैं या सीजर्स जिनको हम बोलते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। कई कारण जैसे बुखार का आना, शरीर में नमक की कमी, चोट लगना, इन्फेक्शन या कोई नशा जैसे शराब आदि की लत, उसकी वजह से कई बार दौरे जो हैं टेम्परेरी आते हैं, इनको कि हम प्रोवोक्ड सीजर बोलते हैं। पर ये प्रोवोक्ड सीजर टेम्परेरी होते हैं और जब ये लंबे समय तक आते हैं तो उसे हम एपिलेप्सी बोलते हैं। और जो कारण पे हम जब जाएं तो ये कारण उम्र के हिसाब से अलग अलग होते हैं और कुछ कॉमन रीजन भी होते हैं। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, जन्मजात विकार, कुछ जेनेटिक कॉजेज और इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, जो हम कहते हैं कभी कभी कि जो है कोई ब्रेन में कीड़ा है या इस टाइप से उसको न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस वो है, और कई बार बहुत हाई ग्रेड फीवर, ये सब कारण जो है बच्चों में होते हैं। युवाओं में अगर हम आते हैं तो उसमें सिर की चोट, इन्फेक्शन, ट्यूमर, ये सब हैं। और बुजुर्ग में जैसे स्ट्रोक है, ट्यूमर है, अल्जाइमर्स है या ट्रोमा। और जब कहीं हमें कोई कारण नहीं मिलता है तो उसे हम इडियोपैथिक कहा जाता है उसे।
3: जी सर, रोड एक्सीडेंट्स के टाइम पर यदि किसी व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट लगी है तो उसके बाद में मिर्गी के दौरे पड़ने की जो संभावनाएं हैं वो कितनी बढ़ जाती है?
4: जी देखिए, रोड एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा संभावना कई बार दौरा पड़ने की होती है। पर उसमें जब रोड एक्सीडेंट के बाद हमारे सिर में कोई ब्लीडिंग होती है जिसको कि हम जो है सब ड्यूरल हेमेटोमा या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा कहते हैं, या फिर कई बार पेनेट्रेटिंग इंजरी होती है, कोई रॉड या कोई चीज़ शार्प जो है आपके ब्रेन में इंजरी करता है, या कई बार फ्रैक्चर होता है, तो ऐसे केसेस में सीजर्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जब सीजर्स जस्ट चोट लगने के बाद आते हैं उसे हम अर्ली सीजर्स कहते हैं, और कई बार सीजर्स कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आते हैं तो इनको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी या लेट सीजर्स कहते हैं। और देखिए, आपने बहुत अच्छा जो है सवाल किया है। रोड एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ पर बहुत कॉमन है। हम दुनिया के 1% व्हीकल रखते हैं, बट हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स 10% हैं दुनिया के, तो इतना ज़्यादा कॉमन है, इसलिए ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है।
3: जी, तो सर हेड इंजरी अगर हो गई है तो अस्पताल जाते वक्त कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए ताकि व्यक्ति को कोई गंभीर समस्या ना हो, और साथ ही हेड इंजरी ना हो इसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है?
4: जी देखिए, सबसे पहले तो जब किसी को हेड इंजरी हो तो उस पेशेंट को जो भी व्यक्ति उसे फर्स्ट रिसीव करे वो ये ध्यान रखे कि उसको थोड़ा सिर वाला भाग ऊपर रखे, उसको उसको गर्दन को जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं करें, कि हो सकता है उसमें कोई स्पाइनल इंजरी हो जिससे कि उसके बाद में पैरालिसिस हो जाए, तो ये ध्यान रखना है। साथ में उसे एक करवट लेटाएं, अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो आपके पास अगर साफ़ सुथरा कपड़ा है कुछ बांध दें, या हाथ के प्रेशर से आप ब्लीडिंग को रोकें। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि ऐसे केसेस में आप उसको मुँह से कुछ ना दें। कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम उनको पानी पिला देते हैं या कुछ और मुंह से खाने को दे देते हैं, इस केस में ऐसा हो सकता है कि वो पानी जो है आपके लंग्स में या सांस की नली में चला जाए और पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए।
3: जी, तो इन तमाम बातों का ध्यान रखना है।
4: जी, और बचाव करने का जब हम बोलते हैं तो हेड इंजरी एक बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे यहाँ इंडिया में, और लगभग 5 लाख व्यक्तियों की डेथ हर साल हमारे यहाँ पे होती है। तो इसको मानते हुए हमें ये करना है कि आप हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हमेशा हेलमेट लगाकर चलाएं, सीट बेल्ट बांधें, और अपने जो व्हीकल है उसको दुरुस्त रखें, और हमेशा जो है ध्यान रखें रोड पर चलते वक्त।
3: जी, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, तमाम नियमों का पालन हमें करना है, तो हेलमेट लगा के और सीट बेल्ट बांध के चलिए।
0: सुनते रहिए गुलाबी नगर का गुलाबी चैनल 100.3 FM, रेडियो पिंक सिटी।
3: 9:22, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ मैसे मैत्रो ही आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ में मिर्गी यानी एपिलेप्सी की। ये शब्द भले ही हम सब ने सुना हो, लेकिन अगर बात करें मिर्गी रोग के बारे में जानकारी की तो जनाब वो आज भी जरा कम है। दौरा पड़ने पर क्या किया जाए, किन बातों का ध्यान रखें, ऐसी कई चीजें हैं जिनका पता ना होने की वजह से लापरवाही की जाती है और मिर्गी के रोगी के लिए खतरा बढ़ जाता है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या है मिर्गी का सही इलाज, हेल्थ इज वेल्थ में आज इसी पर कर रहे हैं बात। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी, 13 सालों से भी अधिक का अनुभव है आपको और 4,000 से भी ज्यादा सर्जरीज आप कर चुके हैं। और श्रोताओं, अगर आपके मन में भी है कोई भी सवाल मिर्गी रोग से जुड़ा हुआ तो जुड़ सकते हैं हमसे। हमारी फोन लाइंस 2200-600 और 2200-800, बोले तो 2200-600 एंड 2200-800 पर। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर भी आ सकते हैं, टाइप करें रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, उसका आज का जो अपडेट है उसके कॉमेंट सेक्शन में जाइए और वहां अपना सवाल पोस्ट कर दीजिए। डॉक्टर साहब, पहचान की अब हम बात करें तो मिर्गी की पहचान जरूरी है, तो कैसे पहचाने कि ये दौरा मिर्गी का है, क्या लक्षण नजर आएंगे?
4: जी देखिए, मिर्गी के दौरों में वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हमें मिलते हैं, तो शुरुआत करते हैं। कई बार बहुत ही हल्का सा कुछ सेकंड्स के लिए पर्सन ब्लैंक हो जाता है, वो भी एक दौरे का टाइप है। कई बार सिर्फ कन्फ्यूजन होता है पेशेंट को, कई बार पेशेंट को एबनॉर्मल सेंसेशंस होते हैं, जैसे उसको कुछ स्मेल एबनॉर्मल आ रही है कुछ समय के लिए, कुछ एबनॉर्मल वॉइसेस आ रही हैं, कई बार जो है उसको एबनॉर्मल फीलिंग्स हो रही हैं, ये भी एक दौरे का टाइप्स है। उसके अलावा कई बार शरीर में पूरा एकदम से जिस तरीके से झटके आते हैं दौरे में, पूरा शरीर हिल जाता है, कुछ शरीर में जकड़न हो जाती है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, और उसको कई बार जो है जीप उसकी कट जाती है, एकदम जो है स्टेयरिंग लुक हो जाता है उसका, और वो बेहोश हो जाता है। साथ में कई बार पेशेंट की बॉडी एकदम शेकिंग जो है अबनॉर्मल मूवमेंट्स करती है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है एपिलेप्सी में हो सकते हैं।
3: जी, तो इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो तुरंत जाना है विशेषज्ञ के पास, और क्या है इसका बेहतरीन और सही इलाज जानेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। मैं हूं मैसे मैत्रोई आपके साथ। हेल्थ इज वेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी की, क्या है कारण, लक्षण और इलाज। हमारे साथ हैं आज स्टूडियो में डॉक्टर योगेश अग्रवाल।

0: 100.3 FM सुनते रहो।
1: धूल, धुआं, पोल्यूशन और खराब मौसम कितना कुछ सहती हैं आपकी आंखें आपके लिए। रखिए अपनी आंखों का खास ख्याल विद आनंद आई हॉस्पिटल।
2: वर्ल्ड क्लास आई केयर सॉल्यूशंस बाय पायनियर्स इन ब्रिंगिंग लेसिक टेक्नोलॉजी लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी,
1: जहां फाउंडर डॉक्टर सोनू गोयल और उनकी टीम द्वारा सिर्फ 8 सेकंड्स में स्माइल प्रो प्लस लेसिक टेक्निक से आपकी आंखों को मिलती है नई रोशनी।
2: गेट अ क्लियर विजन विद आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर, तकनीक में सबसे आगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9772097720।
3: टाइम हो गया एक्जैक्टली 9:30। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ मैसे मैत्रेयी आपके साथ और हेल्थ इज वेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी की। क्या है इसका कारण, लक्षण और क्या है इसका बेहतरीन इलाज और कब पड़ती है सर्जरी की जरूरत, विस्तार से हो रही है आज बात। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी। और श्रोताओं, अगर आपके मन में भी है कोई भी सवाल मिर्गी रोग से जुड़ा हुआ तो जुड़ सकते हैं हमसे हमारी दो फोन लाइन्स के जरिए 2200 और 2200 बोले तो 2200600 एंड 2200800 पर। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी आ सकते हैं, टाइप कीजिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, उसमें आज का अपडेट आपको दिखेगा, उसके कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर योगेश, अब इसकी बात करें कि जेनेटिक, क्या अनुवांशिक हो है मिर्गी की जो बीमारी है?

0: जी, जो मिर्गी की बीमारी है उसमें 30-40% केसेस वो आनुवंशिक हो सकते हैं। तो जैसे कि कुछ सिंड्रोमिक प्रेजेंटेशन होती है जिनमें मल्टीपल डिजीज़ एक साथ होती है, वो जेनेटिक होती है। लाइक एक एग्जांपल हम लेते हैं डाउन सिंड्रोम, ट्रेट सिंड्रोम, इस तरीके के कुछ सिंड्रोमिक प्रेजेंटेशन होते हैं जो कि वंशानुगत होते हैं और जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी ये कई बार एक ही परिवार के कई सदस्य उसमें जो है एपिलेप्सी मिलती है।
1: जी, तो सर क्या आज इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हमारी हो गई है, ऐसे में नींद की कमी, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से भी मिर्गी के दौरे बढ़ सकते हैं?
0: जी, बहुत अच्छी आपने जो है ना बात पूछी है। जी हाँ, अगर किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो ब्राइट लाइट है, कुछ पंजेंट स्मेल है, या फिर बहुत शोर शराबा है और तनाव है, नींद की कमी जिसमें कि स्पेशल है, ये सभी कारण जो हैं एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे कि आपको मिर्गी का दौरा जो है आ सकता है या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है।
1: जी सर, कई तरह की भ्रांतियाँ, अंधविश्वास जो है मिर्गी के साथ में जुड़े हुए हैं, लोग इसे छुआछूत से जोड़कर देखते हैं, टोने टोटके से इसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। विशेष रूप से बात अगर हम महिलाओं की करें तो कहीं ना कहीं बीमारी को छुपा दिया जाता है, डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता, किसी को पता ना लग जाए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अभी भी सोसाइटी में है। तो इन सब तमाम बातों पर क्या कहेंगे आप?
0: अगेन मैं कहूँगा, बहुत ही अच्छा आपने जो है सवाल किया है। तो देखिए, भारत में अगर हम एपिलेप्सी की बात करें तो लगभग लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं, इससे बच्चे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं एपिलेप्सी से पीड़ित हैं। तो ऐसे केसेस में हम जब जाते हैं तो हमारे भारत में मिथ्स भी, भ्रांतियाँ भी बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से हमारे यहाँ अवेयरनेस इतनी कम है। भ्रांतियाँ जैसे कि हम आपने बताया कि, और स्पेशली गांव में और महिलाओं में ये भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई ये ऊपर की हवा है,
1: जी
0: कुछ भूत प्रेत है, या कई बार तो ये होता है कि पर्सन कुछ मतलब कि दिखावा कर रहा है अटेंशन ग्रैब करने के लिए और उसको, उस बात को अवॉइड कर दिया जाता है। तो और दूसरा ये है कि ये छुआछूत है, मतलब कि अगर किसी को एपिलेप्सी है तो वो दूसरे को भी हो जाएगी। तो ये सभी भ्रांतियाँ हमारे भारत में प्रचलित है, पर मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई जो है इस तरीके की बीमारी नहीं है, ये कम्प्लीटली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है और जिसको कि ठीक किया जा सकता है, जिसको कि कंट्रोल किया जा सकता है मेडिसिन्स के द्वारा। और ये जो भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई है, इस कारण से कई परिवार, कई पेशेंट जो हैं इलाज से वंचित रह जाते हैं, वो समय पर इलाज लेते नहीं हैं या वो सोशल स्टिग्मा की वजह से डॉक्टर्स तक नहीं पहुंचते और दवाइयां छोड़ देते हैं, इलाज पूरा नहीं लेते। और
1: जी, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सही समय पर इसकी पहचान हो, जो लक्षण डॉक्टर योगेश ने बताए हैं, और विशेषज्ञ के पास सही समय पर जाएं तो बेहतर इलाज हो सकता है। डॉक्टर योगेश, अक्सर जब भी किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, हम बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, और घबराहट में ना जाने क्या क्या करने की कोशिश करने लगते हैं। तो ऐसे में यदि किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो क्या करना चाहिए और विशेष रूप से क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीज़ें आप बताएं सर।
0: बहुत अच्छा। तो पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो यह है, अगर किसी पेशेंट को दौरा पड़ रहा है तो उसे आप एक करवट से लेटाएं ताकि वो कोई वॉमिटिंग करे तो उसकी सांस की नली में नहीं जाए, और कोई नुकीली चीज़ हो तो उसके आसपास से हटा दें, थोड़ा सिर के भाग को ऊपर कर दें और एकदम शांत रहें, उसके कपड़े ढीले कर दें। सबसे बड़ी बात है जो नहीं करनी है वो है कि आपको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। आपके रोकने से ये चीज़ दौरा नहीं रुकेगा, आपको ना ही उसको पानी देना है या मुंह से कुछ देना है। दूसरा, आपको ये सब नहीं करना है कि उसको जूता सूंघा दिया, उसको उसके मुंह में चम्मच डाल के उसके मुंह को खोलने की कोशिश करी, इस तरीके की चीज़ें पेशेंट को बहुत हार्म कर सकती हैं। दौरा खुद ब खुद रुक जाता है, सिर्फ आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। अगर दौरा 5 मिनट तक आता है या उससे ज़्यादा आता है तो ये मरीज के लिए खतरनाक हो सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है। ऐसे केसेस में आप उसे हॉस्पिटल तुरंत ले जाए।

0: जी, तो श्रोताओं अगर आपके मन में भी है कोई भी सवाल एपिलेप्सी यानी मिर्गी से जुड़ा हुआ तो जुड़ सकते हैं हमसे। हमारी दो फोन लाइंस 2200-600 और 2200-800 बोले तो 2200-600 एंड 2200-800 पर। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी आ सकते हैं और वहां पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर योगेश, अब हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, मिर्गी का इलाज। तो इलाज के क्या क्या विकल्प आज उपलब्ध हैं और क्या व्यक्ति को जीवन भर दवाइयाँ लेनी पड़ती है इसकी?
1: जी, इलाज में जब हम जाते हैं तो वो मेडिकली और सर्जिकली दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं, पर 70% ऑफ केसेस जो है मेडिकली ट्रीटेबल होते हैं, उनको मेडिसिन लेकर कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसा कि आपने पूछा कि क्या जीवन भर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, तो कुछ केसेस में इस तरीके से लगातार दवाइयाँ लेने पर जब लंबे समय तक दौरे नहीं आते हैं तो उनको हम पेशेंट को वापस री इवेल्युएट करते हैं, उनका ईईजी करवाते हैं और धीरे धीरे कम करके उनके दवाइयाँ लंबे समय के बाद बंद कर दी जाती
0: हैं। जी, कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, जान लेते हैं क्या इनका सवाल है। हेलो हेलो हेलो, कनेक्शन इनसे लगता है टूट गया है। तो डॉक्टर योगेश, किन परिस्थितियों में सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ेगी पेशेंट को?
1: जी देखिए, जिन केसेस में लगभग दो या दो से ज़्यादा मेडिसिंस अगर चल रही हैं और उसके बाद भी दौरे कंट्रोल नहीं होते हैं, तो उनको हम ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी उसको हम कहते हैं। और ऐसे केसेस में जब हम डिटेल उनका इवेल्युएशन करते हैं, उसमें हम क्या करवाते हैं कि सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होती है, वीडियो ईईजी होती है और पेट स्कैन होता है। ये सब करवाने के बाद अगर हमें कोई सोर्स ऐसा मिलता है जिससे कि एपिलेप्सी अराइज हो रही है या दौरे पड़ रहे हैं, तो उस सोर्स को हटाकर सर्जिकली ट्रीट करके और पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे केसेस में सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल होती है और कई बार तो बिल्कुल ही दवाइयाँ स्टॉप हो जाती हैं या कम हो जाती हैं।
0: जी, कॉलर जुड़ गए हैं वापस से, जानते हैं इनका सवाल। हेलो,
2: गुड मॉर्निंग,
0: अपने नाम बताएं और सवाल पूछें।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार।
2: नमस्कार, शंकर जैन
0: जी, क्या जानना चाह रहे हैं शंकर जैन जी?
2: मैडम, ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मुर्गी का गोरा आता है, ये है क्या बीमारी पहले हुआ? और दूसरी बात ये, जैसे मान लो कभी आ जाती है तो क्या किया जाए उसके अंदर?
0: और जी, दोनों ही चीज़ों का जवाब बहुत विस्तार से डॉक्टर योगेश पहले बता चुके हैं।
1: शंकर जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। तो मिर्गी का दौरा जो होता है, आपकी टर्म में मैं ये बताऊं कि एक हमारा ब्रेन जो है इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो अगर उस सर्किट में कोई फॉल्ट आ जाए तो वो बिजली के कनेक्शन जो है अबनॉर्मल हो जाएंगे, करंट अबनॉर्मल हो जाएगा, बस यही जो है मिर्गी का दौरा होता है। ठीक है, और इस केस में आपको क्या करना चाहिए, अगर किसी भी पर्सन को दौरा पड़ता है तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल जाएं, अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाएं और दौरे के लिए मेडिसिन चालू करवाएं। थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाइयां लेकर इनको ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है।
0: जी, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी सर, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें।
3: प्रमोद बोल रहा हूँ,
0: क्या जानना चाह रहे हैं प्रमोद जी?
3: एक तो क्या है कि जिनके ये समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उनको क्या अकेला कितना घातक होता है जब बाहर जाने में निकलने में। दूसरा क्वेश्चन है कि मिर्गी का हम नॉर्मल व्यक्ति को पता कर सकते हैं कोई टेस्ट वैसे कि इनकी मिर्गी का हो सकता है या इलेक्ट्रिक जो डिपार्टमेंट आप बता रहे हैं ब्रेन में वो खराब मतलब एबनॉर्मल है। और तीसरा क्वेश्चन है, हार्ट से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है?
1: बहुत अच्छा आपने प्रमोद जी आपने जो तीन सवाल पूछे हैं, पहला सवाल जो आपने
0: कि अकेले इनके लिए रहना कितना हार्मफुल हो सकता
1: बिल्कुल
0: है।
1: ऐसे पेशेंट जिनको दौरा पड़ता है वो वैसे तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि स्विमिंग, जैसे कि लॉन्ग ड्राइविंग और बहुत ज़्यादा हाइट पर जाना और कुछ ऐसी एक्टिविटी जिनमें ट्रॉमा होने की पॉसिबिलिटी होती है, ये सब उस पर्सन को अवॉइड करनी चाहिए, अदरवाइज वो बाकी नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकता है। दूसरा जो सवाल आपने पूछा वो ये है कि जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या ये वाकई में सीजर या एपिलेप्सी है उसको

0: डायग्नोस करने के लिए हम उसकी ईईजी करवाते हैं और ये पिक कर लेता है कि ये वाकई में दौरा है या नहीं है, ठीक है। और आपने
1: हार्ट
0: जो
1: पर भी इसका क्या असर हो सकता
0: जी
1: है क्या?
0: हार्ट पर, हार्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है
1: जी, तो श्रोताओं आप भी अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी फोन लाइंस 2200-600 और 2200-800, साथ ही हमारा फेसबुक पेज भी है, आप वहां भी आ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। टाइप कीजिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, उसके कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना सवाल लिख दीजिए। साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। बात आज हम कर रहे हैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी की।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम।
1: 9:46 रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग कहते हुए मैं हूं मैसे मैत्रो आपके साथ, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी। और आज श्रोताओं हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी की। तो अगर आपके मन में भी है कोई सवाल मिर्गी रोग से जुड़ा हुआ तो जुड़ सकते हैं हमसे, हमारी दो फोन लाइन्स 2200 और 2200। साथ ही हमारा फेसबुक पेज, वहां जाकर भी आप अपना सवाल लिख सकते हैं। सर अक्षय हमसे जुड़े और पूछ रहे हैं, इनकी बहन है जिन्हें बचपन से मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, अभी उनकी उम्र 40-45 साल के करीब हो गई है और गोली उनकी जो है वो चल रही है, इलाज उनका चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि जब भी उन्हें चमड़े की चीज सुघाते हैं हम, दौरा आता है उस दौरान, तो वो ठीक हो जाती हैं। तो क्या ये जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्या कहेंगे आप?
2: जी अक्षय जी, देखिए अभी हमने बात की थी कि कुछ भ्रांतियों के बारे में, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो हम जब भी किसी को दौरा पड़ता है तो हम उसे चमड़े की चीज़ सूंघा देते हैं या कोई ऐसी वस्तु उसके पास में ले आते हैं या कुछ और करते हैं, ये सब आपका वहम है। जो दौरा होता है उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना वो रुकता है, दौरा अपने आप में ही कुछ सेकंड में ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको लगता है कि हमने चमड़े की वस्तु सूंघाई और ये रुक गया है ना, पर इस केस में आप कहीं वहम में रहेंगे और कभी ये दौरा लंबे समय तक चलेगा तो मरीज का नुकसान हो सकता है। तो मेरी आपको सलाह ये है कि अगर बचपन से किसी को दौरे आते हैं तो उसको आपको रेगुलर जो है डॉक्टर से कंसल्टेशन करें और दवाइयां लें। हो सकता है कि दवाई की डोज जो है उम्र बढ़ने के साथ या वेट बढ़ने के साथ साथ में उसको एडजस्टमेंट करना पड़े।
1: जी सर, मिर्गी रोग और सर्जरी इसकी बात हम कर रहे थे, और यदि हम सर्जरी के बारे में विस्तार से बात करें तो कितना जो है बेहतर रहता है सर्जरी करना मरीज के लिए?
2: जी देखिए, जैसा कि हमने बात की थी कि जिन पेशेंट्स को दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है और इतने ज़्यादा सीजर्स आते हैं कि धीरे धीरे उनके उनको जो है ब्रेन में चेंजेस आने लगते हैं, उनका बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे केसेस में अगर हमको कोई सोर्स मिलता है तो हम उसमें सर्जरी जो की जाती है। अब सर्जरी के तीन टाइप होते हैं, जो कि पहला है रिजेक्टिव सर्जरी, जिसमें कि जो सोर्स मिला है उसको हम सर्जरी के द्वारा निकाल देते हैं। दूसरा है इसमें डिसकनेक्शन सर्जरी, जिसमें कि आप जो मानिए कि एक कंप्यूटर में एक चिप है जो कि डिफॉल्ट हो गई है और उस चिप को के हम आसपास के सारे कनेक्शन जो हैं वो काट दें
1: जी,
2: तो वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो कम हो जाएगी उसकी। तो एक ये डिसकनेक्शन सर्जरी होती है, और तीसरी होती है न्यूरोमॉड्यूलेशन। पर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो रिजेक्टिव सर्जरी में होता है, और कई केसेस कुछ ऐसी एपिलेप्सी होती हैं जैसे मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस है, या कई बार कोई उसमें ट्यूमर होता है या कुछ ऐसा लीजन होता है जिसको हम निकाल सकते हैं। तो इसमें सर्जरी करने के बाद कई बार मरीज को एपिलेप्सी की समस्या जो है बिल्कुल बंद हो जाती है और उसकी दवाइयाँ कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती हैं। तो प्रॉपरली अगर इवेल्युएट करके की गई सर्जरी का बहुत ज़्यादा फायदा मरीज को पहुंच सकता है।
1: जी सर, आप इतने सारे पेशेंट के साथ में डील करते हैं एपिलेप्सी जैसी बीमारी, तो लोगों के अंदर जो हिचकिचाहट है या फिर ये सोचना कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा, क्या नज़रिया होगा समाज का, आप क्या देखते हैं सोसाइटी के लेवल पर, जो अवेयरनेस का लेवल है या फिर जो एक्सेप्टेंस की बात है, किसी को मिर्गी का दौरा हो गया तो उसको सामान्य तौर से देखा जाए जैसे सर दर्द है या कोई और बीमारी है, क्या वो बदलाव आप देख रही हैं, कहाँ पर हैं हम, स्थिति क्या है अगर हम समाज की बात करें?
2: जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक कम्प्लीटली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है, जिस तरीके से डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, ये एक बीमारी है
1: जी,
2: और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो समाज धीरे धीरे, समाज में मैंने देखा है कि अभी बदलाव भी आ रहे हैं, लोगों में एक्सेप्टेंस भी है, और स्पेशली जो है गांव में थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसके लिए समाज को मिलकर प्रयास करने चाहिए ताकि जो है उन पेशेंटों को इलाज मिल सके।
1: जी कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, जान लेते हैं इनका सवाल। हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी सर, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें।
3: मेरा नाम प्रमोद कुमार केडिया।
1: जी क्या जानना चाह रहे हैं प्रमोद जी?
3: मेरे जब तीन साल

0: था ना
1: जी
0: तब मेरे फर्स्ट दौरा पड़ा था
1: जी,
0: अब मैं 74 साल का हो गया, दवाई कंटिन्यू चालू है मेरी
1: जी।
0: तो पहले तो मैं 3 बार डोज लेता था
1: जी सर,
0: पांगड़िया साहब को दिखाया था बीच में
1: जी,
0: तो
1: जी
0: उन्होंने 3 की जगह 1 बार कर दी डोज रात में
1: जी।
0: अब मैं वो डोज चालू रखूं या बंद करूं,
1: क्या कहेंगे डॉक्टर साहब?
2: जी प्रमोद जी, अगर आपको दौरा के लिए आप जो दवाइयाँ लेते हैं उनको कभी भी अब्रप्टली या अचानक से स्टॉप नहीं करना है। अगर आपको दवाई कम करनी है या 2 से 3 साल से आपको दौरे नहीं पड़े हैं तो आप प्लीज़ अपने नज़दीकी डॉक्टर जो हैं न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लें और वो धीरे धीरे इसको कम करके और बंद करेंगे
1: जी। तो खुद से जो है दवाइयां बंद कर देते हैं अक्सर पेशेंट्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, आप भी अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी फोन लाइंस 2200-600 और 2200-800। और आगे ये जानेंगे डॉक्टर योगेश अग्रवाल से कि क्या मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: जाना। किशोर कुमार साहब की आवाज़ और जिंदगी को किस तरह से जीना है वो बात जो है इस गाने में कही गई है। तो मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। आप सुन रहे हैं अभी हेल्थ इज वेल्थ, मैं हूँ एसएम मैत्रेयी आपके साथ और स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश अग्रवाल। बात कर रहे हैं हम एपिलेप्सी यानी मिर्गी की। डॉक्टर साहब, भावना शर्मा जी हमसे जुड़ी फोन लाइंस के जरिए और पूछ रही हैं कि इनके हस्बैंड को 2011 से दौरे पड़ने शुरू हुए थे, कोरोना से पहले जो आखिरी दौरा था वो कोरोना से पहले इनको आया था, उसके बाद में अब तक कोई दौरा नहीं पड़ा है, दवाइयां चल रही हैं। ये जानना चाह रही हैं पहली बात, क्या दवाइयां कम हो सकती हैं या हमेशा के लिए बंद भी हो सकती हैं या नहीं, और दूसरा ड्रिंकिंग करना कितना नुकसानदायक हो सकता है ऐसे पेशेंट्स के लिए।
1: जी भावना जी, एक तो ये कि जो आपकी मेडिसिन चल रही हैं दौरे के लिए वो आपकी कम हो सकती हैं और बंद भी हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको खुद नहीं छोड़ना है, आपको डॉक्टर से एडवाइस लेनी है, वो प्रॉपरली आपको टैपर करके या कम करके वो बंद कर देंगे। दूसरा जो आपने बोला है अल्कोहल या लेने से जो है दौरा पड़ने के ऊपर बहुत गंभीर असर होते हैं,

0: से एक ट्रेडिशन रहता है, जब भी बच्चों को बुखार आता है हम क्या करते हैं, हमेशा सिर पर पट्टी रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पुराने लोगों को भी ये था कि पट्टी रखेंगे, बुखार नहीं आएगा बच्चों को, तो उनको दौरा पड़ने से रोका जा सकता है इस कारण से।
1: जी सर, जिनको मिर्गी है, दौरे पड़ते हैं, बहुत सी बातें कही जाती है, आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कुछ गेम है वो आप नहीं खेल सकते, क्या कहेंगे आप? क्या मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है?
0: जी बिल्कुल, मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी सकता है, ऑफिस जा सकता है, घूम सकता है, ड्राइविंग कर सकता है, जो भी नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते कि वो अपनी मेडिसिंस और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली फॉलो करे, मेडिसिन रेगुलरली ले, अपना ध्यान रखे। पर जो मैंने एक्टिविटी की बात की थी, स्विमिंग और डाइविंग इस टाइप की एक्टिविटी, उसको अवॉइड करना।
1: अवॉइड करना है। आज मिर्गी के ऊपर इतनी जानकारी डॉक्टर योगेश अग्रवाल आपके माध्यम से हम सभी तक पहुंचा पाए। कार्यक्रम के अंत में क्या एक मैसेज रहेगा आपका सभी के लिए?
0: जी मेरा ये कहना है कि प्लीज़ आप अपनी सोसाइटी में जो है इस तरीके के कोई भी आपको पीड़ित मिले या जिनको दौरा आता हो, तो प्लीज़ उनको ये फील नहीं करने दे कि वो लोग समाज में ये फैला हुआ है कि इसको मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है या उस इसको कोई भूत प्रेत है समथिंग। तो इस तरीके से हमें थोड़ा अवेयरनेस लानी है, और मैं कहता हूँ कि अगर किसी को भी दौरा पड़ता है या एपिलेप्सी की बीमारी है, तो उसे उस पर ध्यान दें, उसका इलाज करवाएं और ये अवेयरनेस फैलाएं। उसको ये फील नहीं होने देना है कि वो पर्सन को कुछ इस तरीके की बीमारी है, वो अदरवाइज वो जो है छुप उस बीमारी को छुपाता है, और इससे समाज में ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो
1: जी
0: कम करने के लिए हमको जो है उसको सोशली एक्सेप्ट करना है।
1: जी तो सही समय पर यदि हम विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो सही और बेहतरीन इलाज होगा, और साथ ही सहयोग होना चाहिए परिवार का और समाज का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।
2: आनंद आई हॉस्पिटल हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम के प्रायोजक थे आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर। चश्मे को कहें बाय बाय।
3: धूल, धुआं, पोल्यूशन और खराब मौसम कितना कुछ सहती हैं आपकी आंखें आपके लिए। रखिए अपनी आंखों का खास ख्याल विद आनंद आई हॉस्पिटल।
4: वर्ल्ड क्लास आई केयर सॉल्यूशंस बाय पायनियर्स इन ब्रिंगिंग लेसिक टेक्नोलॉजी लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी,
3: जहां फाउंडर डॉक्टर सोनू गोयल और उनकी टीम द्वारा सिर्फ 8 सेकंड्स में स्माइल प्रो प्लस लेसिक टेक्निक से आपकी आंखों को मिलती है नई रोशनी।
4: गेट अ क्लियर विजन विद आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर, तकनीक में सबसे आगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9772097720।
5: वेडनेसडे को हम काम के पिच पर जम जाते हैं, फुल फॉर्म में आकर चौके छक्के उड़ाते हैं, रेडियो पिंक सिटी करता है सब कुछ हियर। कुछ ऐसा होता है पिंक सिटी का बुधवार, म्यूजिक अंदर और टेंशन बाहर।
6: यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या?
5: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
7: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
8: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है,
7: तुम्हें तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
8: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
9: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
10: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदे।
11: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री,
12: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
13: दिमाग चार्ज कर अपना।
14: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
13: देखा
12: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
14: अब क्या करोगे?
12: फ्री वाईफाई है ना।
13: बुद्धू सुधर जा।
14: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
12: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
14: RBI कहता है
15: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
16: कुछ कहता है जयपुर,
17: कुछ कहता है जयपुर,
16: क्या कहता है जयपुर,
17: क्या कहता है जयपुर?
18: मैं जयपुर का हाथी गांव हूँ, जैसा नाम है वैसा ही काम। मैं इंसान नहीं, हाथियों के लिए बसाया गया हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसे वैसे नहीं है ये हाथी, इनके पुरखों ने जीते हैं जंग के मैदान, और ये करवाते हैं सैलानियों को जयपुर से पहचान। आमेर से कुछ ही किलोमीटर दूर है कुंडा गांव, यहीं पर मिलेंगे 100 हाथी और उनके दोस्त महावत। करीब 50 एकड़ जमीन पर चिंगाड़ते हैं ये मस्त मौला गजराज, और उनके महावतों के पास है कहानियों का पिटारा और न जाने जयपुर से जुड़े कितने ही राज। सबसे मजेदार

0: वो तालाब है जिसमें पानी कम और मस्ती ज्यादा होती है। यहाँ उम्र को भूलकर सब बच्चे बन जाते हैं, हाथी महावत को और महावत हाथियों को नहलाते हैं। जानवर से इंसान की दोस्ती की महक है यहाँ। सुख दुख बांटने के किस्से, आंखों से बातें होती है और दिल से दोस्ती। जंग के मैदान से लेकर आमेर महल की सफारी तक हाथियों से जयपुर का अनोखा लगाव हूँ मैं। जयपुर का हाथी गांव हूँ।
1: 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
1: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। 10:06
2: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप। मैं सुमित्रा आपके साथ और शुरुआत

इस शो की नाम है जिसका लफ्जों की पाठशाला, और हर WM की GM यानी वेडनेसडे मॉर्निंग्स की गुड मॉर्निंग्स में 10 से 11 इस पाठशाला में, इस क्लास में कुछ लफ्ज, कुछ शब्द हम आपके लिए चुन चुन कर ले आते हैं, और जान मेरी जानेमन आपको बस उस शब्द उस लफ्ज का सही सही मतलब हमें बताना है। अब वो शब्द वो लफ्ज किसी गाने से जुड़ा भी हो सकता है, बहुत सारे गाने होते हैं जिनमें कुछ कमाल के उर्दू के अल्फाज आते हैं, मतलब उनका कई बार पता नहीं होता, और पता चलता है तो गाने की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। और गाने के अलावा हिंदी के कुछ कठिन वाले शब्द भी जो है ना, वो हम आपके लिए ले आए हैं। तो आंटी जी, लेके प्रभु का नाम इजी वाले लफ्ज से करते हैं आज के लफ्जों की पाठशाला की शुरुआत। तो पहला लफ्ज है जया। अब इससे पहले कि जान मेरी जानेमन आप सोचो कि ये जो लफ्ज है जया कहाँ पर आपने सुना है, कौन सा गाना है, तो सोचने से पहले आपको वो जो गाना है ना उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो सुनवा रही हूँ, और ताकि आपके लिए आसान हो जाए। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, ऑसम सा ये गाना है, और इसमें आता है ये लफ्ज़।

अपनी ही किसी अदा से पूछ लो तो क्या मतलब होता है, बादलों में छुप रहे चांद क्यों अपने हुस्न की जया से पूछ लो। क्या मतलब है जया का, फिल्म फिर तेरी कहानी का औसम से गाना है। और जानते हैं आप जया इसका मतलब क्या होता है, तो लगा दीजिए स्टूडियो नंबर 2200 2200 2200 या फिर ढूंढ रहे हैं आप हमें फेसबुक पेज पर, बिल्कुल मिल जाएंगे हम आपको रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM इस नाम से। आज का अपडेट उसकी कॉमेंट सेक्शन में जाइए और अपना सही जवाब वहां पर पोस्ट कर दीजिए। अभी के लिए यही वाला गाना सेट कर दिया है आपके कानों के पास, फिर तेरी कहानी याद आई, कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज़ और अनु मलिक का ऑसम सा म्यूजिक। आपको बताना है जया इसका मतलब क्या होता है, जिया।

सुखविंदर सिंह, उदित नारायण एंड सुनिधि चौहान की आवाज दिल डांस मारे। 10:20 हो गए एग्जैक्टली टाइम। सुन रहे हैं आप शो लफ्जों की पाठशाला मेरे यानी मैसे मैथ्री के साथ। कमाल का लफ्ज आपको दिया था गाने से जुड़ा हुआ, फिर तेरी कहानी याद आई, ये फिल्म थी जिसका बेहतरीन सा गाना बादलों में छुप रहा है चंद क्यों अपने हुस्न की जया से पूछ लो। और बहुत सारे जवाब मुझे मिले, बहुत सारे लोग जुड़े, फेसबुक पेज पर भी जुड़े, हमारी फोन लाइन के जरिए भी जुड़े, लेकिन बाबू भैया एक सही जवाब मुझे नहीं मिला है, एक भी सही जवाब मुझे नहीं मिला। किसी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा मैत्री खूबसूरत होता है, अदा होता है, परछाई होती है, बहुत लोगों ने कहा जीत होता है, सफलता होती है। तो आप जरा अब सोच के देखो कि बादलों में छुप रहा है चांद क्यों अपने हुस्न की जीत से पूछ लो, अपने हुस्न की खूबसूरती से पूछ लो। ना भाई ना, शब्द था अपने हुस्न की जया से पूछ लो। सुनवा आपको देती हूँ। अपने हुस्न की जया से पूछ लो, ना कि जया, जया से पूछ लो। तो जया कहते हैं, बोलते हैं रेडियंस को, लाइट को, प्रकाश, रोशनी, चमक, शाइन को। अब आपका चेहरा इतना चमकेगा तो चांद तो बादलों में छुप ही जाएगा ना। तो जया जिसका मतलब होता है लाइट, प्रकाश, रोशनी,

चमक, और जिस जिसने भी कहा खूबसूरत, अदा, परछाई या जीत विजय, तो ना जी ना, ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो जया, जया मतलब लाइट, रोशनी, अपने हुस्न की चमक से, अपने हुस्न की शाइन से पूछ लो, ये सही जवाब है। तो अब अगले शब्द की बात कर लेते हैं, गाने से ज़रा हटकर है और इस बार ना थोड़ा सा इजी वाला मैं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट ये हो गया है आपके लिए। तो चलो जी, थोड़ा इजी वाला दे देते हैं। अब क्या करूँ, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, कठिन वाले के बाद में ईजी वाला सवाल तो बनता ही है ना बाबू भैया। तो ईजी है, बहुत बार आपने ये शब्द सुना होगा, शब्द है संस्मरण, SANSMARAN, संस्मरण। ये शब्द कई बार आपने सुना होगा, मगर सही सही मतलब कितना जानते हैं आप? जानते हैं तो लगा दीजिए स्टूडियो नंबर 2200600 और 2200800, या फिर ढूंढ रहे हैं हमें हमारे फेसबुक पेज पर, तो बिल्कुल मिल जाएंगे हम आपको रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM इस नाम से। वहाँ पर आज का अपडेट, उसके कमेंट सेक्शन में जाना और जाने जाना, वहाँ पर अपना सही जवाब पोस्ट कर दीजिए और बता दीजिए संस्मरण किसको कहते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार तो मुझे बहुत सारे सही जवाब जो है वो मिल ही जाएंगे। तो बता दीजिए संस्मरण किसको कहते हैं। और अभी के लिए ऑसम सा सॉन्ग पहुंच रहा है आपके कानों तक, अलका याग्निक एंड सोनू निगम की आवाज, दुल्हन ले जाएंगे धीरे धीरे चलना, लेकिन धीरे धीरे नहीं यार, जल्दी जल्दी से सही सही जवाब बता दीजिए आंटी जी।

0: दी हाँ ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
3: You're listening to Radio Pink City right here on 100.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी
1: 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: 10:35 सुन रहे हैं आप शो लफ्जों की पाठशाला, मेरे यानी मैं सिमित्रा के साथ। लेके शब्द लफ्जों की क्लास, जहाँ एक शब्द हम आपको देते हैं और उसका सही सही मतलब आपको हमें बताना होता है। अब वो लफ्ज जो है गाने से जुड़ा भी हो सकता है या गाने के अलावा हिंदी का डिफिकल्ट वाला शब्द भी हो सकता है। तो ऐसा ही एक शब्द आपको दिया था, संस्मरण किसको कहते हैं, और बताना था सही सही आपको संस्मरण का मतलब। तो पहले मैं आपको सही मतलब बताती हूँ, फिर जिन जिन ने सही जवाब दिए हैं या जो आस पास भी रहे हैं ना, सबका नाम मैं आपको बताती हूँ। तो संस्मरण कहते हैं यादों या स्मृति के बेस पर लिखी गई किसी घटना, व्यक्ति या स्थान की सच्ची कहानी या सही सही बात को कहते हैं। और सही जवाब के साथ हमसे जुड़े मोहम्मद शाहरुख, नंदलाल जी, मानसरोवर से जुड़े हरीश कुमार जी, वंदना शर्मा जी, बहुत डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने सही जवाब दिया। इसके अलावा सुशीला दत्ता जी, इन्होंने भी बहुत मतलब एग्जैक्टली जो कहते हैं ना ये मतलब है वो इन्होंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सुशीला दत्ता जी। और फेसबुक पेज पर बहुत से लोग जुड़े हैं, और जैसा कि आप जानते हो मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, इसलिए जिन्होंने याद भी बोल दिया ना कि याद, उनका नाम भी हमने कर लिया इसके अंदर शामिल। तो फेसबुक पेज पर सही जवाब के साथ हमसे जुड़े भाटिया हनी, प्रीति अग्रवाल मालवीय नगर से, मधुसना, स्मृति सिन्हा सुशांत सिटी से, प्रवीण चौहान बिल्कुल सही जवाब के साथ, अंकित विवेक विहार सुढाला से हमसे जुड़े हैं, इसके अलावा अशोक टेलर जाड़ियों का रास्ता, कौशल, मंजू, कविता, यामिनी, हेनू, शालू और विवेक कुमावत शास्त्री नगर जयपुर से, अशोक कनौजिया फ्रॉम त्रिवेणी नगर और नरेश कुमार राज कुमावत लालकोटी से, इसके अलावा रियाज शफीक अल्फेज जवाहर नगर जयपुर बिल्कुल सही जवाब के साथ। अब अगले लफ्ज की बात कर लेते हैं, और आपको तो पता ही है

पहले गाने से जुड़ा पूछती हूँ, फिर हिंदी वाला कठिन पूछती हूँ, फिर गाने से जुड़ा पूछती हूँ, तो अब किसकी बारी है? बिल्कुल गाने से जुड़े लव्स की। तो फिल्म आई थी सनी, 1984 में फिल्म आई थी सनी, और इस फिल्म का एक बेहद खूबसूरत सा गाना था सुरेश वाडकर साहब की आवाज़ में, और क्या अहद वफा होते हैं, लोग मिलते हैं और जुदा होते हैं। बहुत बार आपने गाना सुना होगा, मगर कभी सोचा है कि अहद वफा इसका मतलब क्या होता है और क्या अहद वफा होते हैं? तो आपको बताना है अहद वफा का मतलब क्या है। बस सही सही मतलब आप बता दीजिए, किसको कहते हैं अहद वफा, क्या मतलब है इसका, जानते हैं आप तो करना है वही काम, नंबर वही बदले नहीं, 2200-600 और 2200-800, या फिर ढूंढ रहे हैं फेसबुक पेज पर। हर बार मैं बोलती हूँ अब तक नहीं आए क्या, नहीं आए तो आ जाओ, टाइप कर दो रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, आज का अपडेट मिलेगा वहाँ पे, उसके कमेंट सेक्शन में जाना और जाना वहाँ पर अपना सही जवाब जो है ना वो टाइप कर दीजिए और बता दीजिए मुझे अहद वफा का मतलब क्या होता है। चलो जी, अब यही वाला गाना भी आपके लिए प्ले कर देते हैं, जवाब देना आपके लिए और आसान हो जाएगा। बता दीजिए अहद वफा, अहद वफा का मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं अहद वफा।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: प्यार में हो या रेलवे टिकट की कतार में, गुनगुनाना हमारी आदत है। किचन में करछी चलाए या ऑफिस में कंप्यूटर, गुनगुनाना हमारी आदत है। बच्चों के साथ खेलें या बुजुर्गों को सैर पर ले जाएं, गुनगुनाना हमारी आदत है। मैदान से खलिहान तक, सुबह से शाम तक, गुनगुनाना हमारी आदत है। क्योंकि रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM जयपुर की सुरीली आदत, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद।
3: आप हैं RJ मैत्रेय के साथ, मैत्रेय के साथ ओनली ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
4: 10:51 और सुन रहे हैं आप लफ्जों की पाठशाला, जहां लगती है लफ्जों की, शब्दों की क्लास। और कुछ शब्द गानों से जुड़े हुए, कुछ गानों के अलावा हम आपके लिए ले आते हैं और आपको बताना होता है बस सही सही इसका मतलब क्या है। तो ऐसा ही एक लफ्ज आपको दिया था, गाने से जुड़ा हुआ, सनी फिल्म का ये गाना था, सुरेश वाडकर साहब की आवाज़। और क्या अहद वफा होते हैं, मतलब आपको बताना था किसको कहते हैं दे वफा। तो ये दो लफ्जों से बना है, अहद और वफा। अहद किसको कहते हैं, अहद कहते हैं प्रॉमिस, कमिटमेंट को, वादे को, और वफा कहते हैं लॉयल्टी को, वफादारी को। तो अहद वफा कहते हैं प्रॉमिस ऑफ लॉयल्टी, यानी कि वफादारी का वादा। तो शायर कह रहा है कि

हकीकत यह है कि लोग मिलते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं। तो ये अहद वफा, ये साथ निभाने की कस्में वादे, ये वफा के कस्में वादों का मतलब भी क्या है। बहुत से लोग सही जवाब के साथ जुड़े, लेकिन कुछ जो इंटरेस्टिंग आंसर मेरे पास आए ना, वो भी बताए बिना मतलब रहा नहीं जा रहा है। इंटरेस्टिंग जवाब, किसी ने कहा मैत्री घमंडी भी होता है, किसी ने कहा गुरूर भी हो सकता है, किसी ने कहा धोखा देना भी हो सकता है। नहीं, तो सही जवाब है वफादारी का वादा, और क्या अहदे वफा होते हैं। सही जवाब जिस जिसने पहुंचाया नाम उनके मैं आपको बता देती हूं। तो हमसे जुड़े झूठवाड़ा से तवन कुमार खांडे जी, महेश जांगिड़, इसके अलावा रेखा कोहली जी बिल्कुल सही जवाब के साथ, चित्रकूट से हमसे जुड़ी ज्योति जी, मानसरोवर से हरीश कुमार जी, प्रीति अग्रवाल बिल्कुल सही जवाब के साथ, इसके अलावा वंदना शर्मा, इनका जवाब भी बिल्कुल सही। अब फेसबुक पेज पर कौन कौन जुड़ा है, नाम किस किस का शो हो रहा है। हमसे जुड़ी है रानू पाटनी, भाटिया हनी, विवेक कुमावत शास्त्री नगर से, अशोक कनूजिया फ्रंट त्रिवेणी नगर से, पंकज अरोड़ा जी जनता स्टोर से, और प्रीति अग्रवाल मालवीय नगर से। और मस्त सॉन्ग सुनाया है, अब इन्होंने कहा है कि इनका दिल भी कुछ बस मेरे जैसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी। इसके अलावा हमसे जुड़े प्रवीण चौहान जी, नरेश कुमार, राजकुमावत लालकोटी से, सुशीला दत्ता जी जुड़ी बनी पार्क से, मधुसिन्हा, स्मृति सिन्हा सुशांत सिटी से, और जुड़े हैं रियाज, शफीक, अल्फेज जवाहर नगर से। तो अब कौन सा शब्द गाने से जरा हटके रे हटके आएगा, और मतलब आपको मुझे बताना है क्या मतलब होता है इस शब्द का। और ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, बोला होगा। शब्द है संदर्भ। संदर्भ किसको कहते हैं? संदर्भ, सही सही एग्जैक्ट मतलब जो है, अर्थ जो है, आपको मुझे बताना है संदर्भ किसको कहते हैं, क्या मतलब होता है संदर्भ का। और अगर जानते हैं तो करना है वही काम, लगाना है स्टूडियो नंबर 2207600 और 2208600। इसके अलावा साथ ही आ सकते हैं आप हमारे फेसबुक पेज पर, टाइप कीजिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM आज का अपडेट, उसके कमेंट सेक्शन में जाना और जाने जाना, वहां पर अपना सही जवाब पोस्ट कर दीजिए और बता दीजिए संदर्भ किसको कहते हैं। SANDARBH संदर्भ। अभी के लिए वो वाला गाना सुना रही हूँ आपको जो कल लिफ्ट में, मतलब मैं गा रही थी, एकदम से मुझे याद आया अदनान सामी साहब की आवाज़ में, असम से ही गाना है, बहुत दिनों बाद में याद आया, तो आज प्ले कर रहे हैं आपके लिए। तो साथ रहने का और बस सुनते रहने का जाने जाना।

0: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, मैं हूँ मैसे मैत्री आपके साथ लफ्जों की पाठशाला में. और लफ्ज शब्द आपको दिया था संदर्भ SANDARBH, मतलब आपको सही सही मतलब बताना था. और जब भी इजी वाला देती हूँ तो बस बहुत सारे लोग जो है सही जवाब के साथ जुड़ जाते हैं. तो पहले सही जवाब बताती हूँ, फिर किस किस ने सही जवाब दिया उनके नाम आप तक पहुँचा देते हैं. तो संदर्भ कहते हैं किसी बात, किसी घटना या विषय के आसपास की परिस्थिति, संबंध या पृष्ठभूमि जो उस बात को सही अर्थ में समझने में जो है वो मदद करती है. और सही जवाब के साथ हमसे जुड़े मानसरोवर से हरीश कुमार जी, इसके अलावा नीना जी बिल्कुल सही जवाब के साथ, राजीव जी इनका जवाब भी बिल्कुल सही, हरीश जांगिड़ मालवीय नगर से हमसे जुड़े, शैलेश सोमानी और मीना शर्मा जी इनका जवाब भी बिल्कुल सही. फेसबुक पेज पर कौन कौन जुड़ा है, जुड़े हैं विवेक कुमावत शास्त्री नगर से, अंकित विवेक विहार सुढाला से, परवीन चौहान बिल्कुल सही जवाब के साथ में, नरेश कुमार राजकुमावत लालकुटी से और प्रीति अग्रवाल मालवीय नगर बिल्कुल सही जवाब के साथ में. तो वक्त हो चला है इसी के साथ लफ्जों की पाठशाला को, इस क्लास को आज यहीं समेटने का. अब मिलती हूँ अगले घंटे आपसे लेकर सुनहरी सौगात, मगर उससे पहले चाचा भतीजे कुछ कह रहे, जरा इनकी बात भी सुन लेते हैं.
1: चाचा भतीजे.
2: ओ माय गॉड, चाचा आप क्यों मेरा फ्यूचर डार्क करना चाहते हो?
3: अरे भाई ऐसी क्या बात कर रही हो, हम तो चाहते हैं कि हमारी बच्ची का जो है, जो कहते हैं फटूरे, वो कहा फटूरे बोले
2: फ्यूचर,
3: हाँ फटूरे जो है ब्राइट, हम ब्राइट देखना चाहते हैं भाई हम तो.
2: कैसे करोगे मेरा फ्यूचर ब्राइट? देखो अपने चारों तरफ देखो, इधर आप,
3: इधर भी देख लिया,
2: प्रेस ऑन कर रखी है, उधर टीवी बिना वॉल्यूम के चल रहा है, और सारे घर में कहीं पर फैन कहीं पर लाइट. ऐसे बिजली वेस्ट करोगे तो मेरे फ्यूचर के लिए बिजली बचेगी कहाँ से? आने दो, आज आने दो चाची को, खबर लेंगी वो ही.
3: अरे नहीं नहीं भतीजी भाई, ऐसा कदम बिल्कुल मत कर देना भाई, तुम्हारी चाची जो बेलन से मारती है परसों का टुकड़ा. कान पकड़ू भाई, भाई हाँ, टाइम पर जो है स्विच ऑफ कर दूंगा हर चीज है, भले ही स्विच ऑन स्विच ऑफ में हमारा जो स्विच ही खराब क्यों ना हो जाए. बिजली बचाऊंगा, चिंता मत करो बेटी.
2: सुधर जाओ चाचा, नहीं तो ना ये वाली स्त्री और आपकी स्त्री दोनों ही ना करंट मारेंगी.
3: हाँ बात तो है, दोनों में 440 मारती है. आई, कल वाला दर्द किया बेलन.
2: चाचा
3: भतीजी.
4: चाचा भतीजी, only on Radio Pink City 100.3 FM. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.

0: अलका याग्निक, उदित नारायण, करीना एंड शाहिद कपूर की आवाज़ में एंजॉय किया आपने गाना फ्रॉम द मूवी फिदा। और ये गाना जो था वो करीना कपूर खान और शाहिद कपूर पे पिक्चराइज्ड है। गाने की कमाल की बात ये है कि बीच बीच में जो करीना और शाहिद जो शेर या आप उसे डायलॉग कहिए बोलते हैं ना, वो बड़े मतलब गजब लगता है। आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में तूने चुराया जिया। तो यदि इन डायलॉग्स को, शेर व शायरी को, या यूं कहिए बातचीत जो हीरो हीरोइन के बीच में हो रही होती है गानों के बीच में, उसे हटा दिया जाए तो गाना अधूरा लगता है। तो जान मेरी जाने मन, आज की सुनहरी सौगात जरा अलहदा है बॉस। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे गानों की जिनमें कोई डायलॉग, शेर या बातचीत हो रही है। तो आज की सुनहरी सौगात इसी के नाम 11 से 12 कुछ ऐसे ही गाने ले आए हैं हम आपके लिए।
1: सुनहरी सौगात, सुनहरी सौगात, पुराने बेहतरीन गानों की
2: नजराना भेजा किसी ने प्यार का।
1: 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, बात है।
0: तो जब बात ऐसे गानों की होती है जिनमें डायलॉग, शेर या बातें हो रही होती है ना, तो सबसे पहले जो गाना मेरे जहन में याद आ रहा है वो है साल 1981 मूवी सिलसिला का गाना, ये कहाँ आ गए हम। अमिताभ बच्चन साहब एंड रेखा जी पर पिक्चराइज्ड ये गाना है। और इस गाने के अंदर बच्चन साहब गाने के बीच बीच में जो लाइंस बोलते हैं, जो डायलॉग्स बोलते हैं, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, ठाएं से जाके दिल को छू जाती है बाबू भैया ये लाइनें। तो यही वाला गाना पहुंच रहा है अभी यहां से वहां आपके कानों तक। और आज सुनहरी सौगात में सारे के सारे, मतलब सारे के सारे ऐसे ही वाले गाने होने वाले हैं जिनमें कोई डायलॉग, शेर या फिर हीरो हीरोइन के बीच में बातचीत हो रही है। फिलहाल के लिए सिलसिला का गाना पहुंच रहा है आपके कानों तक। साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। मैं हूं वैसे मैत्रेयी आपके साथ।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: evergreen songs of Bollywood, जो पुरानी यादों को कर दे ताजा, सिर्फ Radio Pink City 100.3 FM पर।
1: कुछ अलग एहसास होता है उन छोटी छोटी बातों का जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, जैसे मम्मी की प्यार भरी डांट,
2: राहुल अरे देखो तुम्हारे हाथ गंदे हैं, राहुल धो के खाना खाओ,
1: पापा का कहना
3: बेटा आई लव यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू,
1: बहन का नाना करते हुए भी फाइनली अपनी वो स्पेशल वाली चॉकलेट शेयर कर लेना,
4: क्या यार इमोशनल अत्याचार मत करो, लो रे खाओ ठूसो,
1: भाई का गुस्से से देखना मगर फिर बाइक की चाबी पकड़ा देना,
5: अम्मू मत बना, ये ले बाइक की चाबी, जा जी ले अपनी जिंदगी,
1: दोस्त का कंधा और सीक्रेट्स रखने का वादा।
6: एक बात बताऊं यार, किसी से कहेगी तो नहीं ना, पक्का पक्का ना,
1: यानी जिंदगी हसीन है जब अपने संग है, ऐसा ही एक साथी 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी।
7: कुछ तो
2: इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता, गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
8: बिल्कुल आती है, सुनो।
2: सुना।
8: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: गाना फ्रॉम द मूवी सरफरोश, साल 1999 में ये फिल्म आई थी और अलका जी की आवाज़ में औसम से गाना बज रहा था आमिर खान एंड सोनाली बेंद्रे पर, और इस गाने के बीच बीच में आमिर

0: खान ने जो शेर बोले है ना, मतलब सुभान अल्लाह। और यदि आमिर खान के ये शेर शायरी इस गाने में नहीं होते तो आंटी जी मतलब गाना शायद थोड़ा सा अधूरा रहता है ना। और आज बाबू मोशाय ऐसे ही गानों की बात हो रही है जो सजाए धजाए गए हैं अलहदा अंदाज में, जिनमें कोई डायलॉग, शेर व शायरी या हमारे हीरो हीरोइन के बीच में बातचीत चल रही है।
1: सुनहरी सौगात, सुनहरी सौगात, पुराने बेहतरीन गानों की
2: नजराना भेजा किसी ने प्यार का।
1: 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
0: 11:23, मैं हूं ऐसे मैत्रेय आपके साथ। तो जान मेरी जाने मन, जब भी बात ऐसे हिंदी सॉन्ग्स की आती है जिनमें बातचीत हो रही है या कोई डायलॉग है या शेरो शायरी बीच बीच में आ रही है गाने के, तो इस फहरिस्ट में जो गाना याद आता है वो है साल 1975 फिल्म आंधी का, तेरे बिना जिंदगी से कोई। ये सॉन्ग संजीव कुमार साहब और सुचित्रा सेन जी पर पिक्चराइज था और इस गाने के अंदर संजीव कुमार और सुचित्रा सेन जी के बीच में जो बातचीत होती है बड़ी कमाल, बड़ी खूबसूरत लगती है ना सुनने में। और ये जो बातचीत है ना, यही इस गाने की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो सुनते हैं यही वाला गाना। और आज सारे के सारे ऐसे ही वाले गाने हैं सुनहरी सौगात, जिसमें बातचीत, डायलॉग या शेर व शायरी हो रही है हमारे हीरो हीरोइन के बीच में। अभी के लिए आंधी फिल्म का ये औसम सा गाना, और मुझे लगता है बिना डायलॉग्स के ना ये गाना अधूरा अधूरा सा लगता है। लता जी एंड किशोरदा की आवाज, साथ में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन की जो बातचीत है वो भी।
3: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
4: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
3: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
4: भूल गई। ना ना,
3: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार्थी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: पुराने बेहतरीन गानों की
1: नजराना भेजा किसी ने प्यार का
0: 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: तो आज की सुनहरी सौगात जान मेरी जानेमन उन गानों के नाम हैं जिनमें कोई डायलॉग शेर शायरी आ रही है, और अगर गाने में इन डायलॉग शेर शायरी या हीरो हीरोइन के बीच की बातचीत को हटा दिया जाए तो वो गाना जरा अधूरा अधूरा लगता है। तो ऐसे ही पूरे गाने जो है इस घंटे 11 से 12 सुनहरी सौगात में ले आए हैं हम आज आपके लिए। इस फेहरिस्ट में अगला जो गाना है वो आता है साल 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम। देवानंद साहब, हेमा मालिनी जी इस फिल्म में नजर आए थे। एक गाना देव साहब और हीमा जी पर पिक्चराइज था, नफरत करने वालों के। जी हाँ, इस गाने के अंदर किशोर दा ने साथ में जो शायरियां बोली है ना, मतलब ऑसम ऑसम। और यदि ये नहीं होती तो गाना भी जरा अधूरा अधूरा सा लगता। नहीं तो अभी के लिए पहुंच रहा है यही वाला गाना यहाँ से वहां। साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। मैं हूँ मैसे मैथ्री आपके साथ 11:33। जॉनी मेरा नाम, किशोर दा की आवाज, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक, ऑसम सा ये गाना। और गाने के बीच में किशोर दा जो शायरी शेरो शायरी बोलते हैं वो भी बड़ी कमाल की लगती है। तो पहुंच रहा है आपके कानों के पास। साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। मैं हूं मैसे मैथ्री आपके साथ।
3: तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होली।
1: काबिल नगरी की हर सुबह खास है, मजेदार है, लाजवाब है, खुशनुमा है, साथ ही शाम को अगर आप है तन्हा तो लीजिए एफएम रेडियो पिंक सिटी की पन्हा। एवरग्रीन देवानंद की याद रखे सलाह, बनाए अपनी शाम भी रंगीन, मस्तानी, सुहानी, क्योंकि आपके साथ है एफएम रेडियो पिंक।
2: वेडनेसडे को हम काम के पिच पर जम जाते हैं, फुल फॉर्म में आकर चौके छक्के उड़ाते हैं। रेडियो पिंक सिटी करता है सब कुछ हियर। कुछ ऐसा होता है पिंक सिटी का बुधवार, म्यूजिक अंदर और टेंशन बाहर।
3: यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या।
2: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
4: सुनहरी सौगात, पुराने बेहतरीन गानों की
5: नजराना भेजा किसी ने प्यार का।
4: 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
6: 11:38 में हूँ मैं सिमेत्री आपके साथ, और आज की सुनहरी सौगात जान मेरी जाने मन जरा अलहदा है। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे गानों की जिनमें कोई डायलॉग, शेर या हीरो हीरोइन के बीच में बातचीत हो रही है, और यदि ये ना हो तो गाना अधूरा लगता है। और 11 से 12 सारे ऐसे गाने आपके लिए चुन चुन कर ले आए हैं। अब इस फेहरिस्ट में अगला जो गाना है वो है साल 1992 में आई फिल्म यलगार से। ये गाना जो था वो बिजराए सर संजय दत्त एंड नगमा पर, और बहुत सारे लोगों ने गाना गुनगुनाना भी शुरू कर दिया होगा, तो बिल्कुल वही वाला गाना जो है प्ले कर देते हैं आपके लिए। आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, औसम सा गाना, और बीच बीच में जो शायरियां हो रही है वो इस गाने की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। मैं हूं मैसे मैत्री आपके साथ। उदित नारायण, सपना मुखर्जी की आवाज, यलगार का औसम सा गाना,

0: गाने जो आपका दिल चुरा ले।
1: हाँ, चुरा के दिल तेरा, चली मैं चली।
0: गाने जिनसे प्यार हो जाए।
2: मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है।
0: वो गाने जो हमेशा जहन में गूंजे।

ये गाने सुनाई देते हैं आपको आपके अपने फेवरेट एफएम पर, जो है 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: ने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
1: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
0: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
1: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
2: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
3: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141256969 6 पर।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल।

0: बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: नहीं नहीं।

0: आपके दिल की बात सुनने को हर पल तैयार। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी
0: 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: 11:52 रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं मैसी मैत्री आपके साथ, और आज की सुनहरी सौगात ने बात कुछ ऐसे अलहदा गानों की जिनमें कोई डायलॉग, शेर या हीरो हीरोइन के बीच में कोई बातचीत हो रही है, नुकझुक हो रही है, और ऐसे ही गानों जो हैं आज हम आपके लिए ले आए हैं। और यदि ये ना हो तो गाना ज़रा अधूरा लगता है। तो अब इस लिस्ट में जो अगला गाना आता है वो है साल 2004 में आई फिल्म हम तुम, सैफ अली खान और रानी मुखर्जी पर पिक्चराइज रही गाना लड़की क्यों न जाने क्यों। और औसम से गाना है। इस गाने के बीच बीच में सैफ अली खान और रानी मुखर्जी के बीच में जो नोकझोंक जो बातें हैं वो बड़ी अच्छी लगती है, और यदि ये नहीं होती तो गाना अधूरा अधूरा सा लगता। तो साथ रहिए, सुनते रहिए, पहुंच रहा है यही गाना आपके कानों तक।

इसी के साथ वक्त हो गया मेरे यहाँ से जाने का, कह देने का आपको टाटा बाय बाय। लेकिन हाँ, लाइफ का फंडा जो सुनाना हर बार है बनता, जो ये कहता है कि जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए, और जो मिला है ना जान मेरी जानेवन, उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रोग्राम FM रेडियो पिंक सिटी। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके बाद आप जुड़ेंगे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से।

0: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कॉलिसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले

0: वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर, जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शबाब फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायनी है गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में गंवार फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
4: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
5: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में राज हठ। इस फिल्म का गाना हजरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे अजीज कश्मीरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ें थीं आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम तुम सा नहीं देखा।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में बैजू बावरा फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में कमर जलालाबादी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम रागिनी।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में राम और श्याम फिल्म का गाना। शकील बदायनी थे गीतकार और संगीतकार थे नौशाद। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायनी और नौशाद की जोड़ी का ही लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म का नाम मदर इंडिया।

हमारी अगली पेशकश सावन की घटा फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, लिखा है सच बिहारी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में गंगा जमुना फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर, फिल्म का नाम फिर वही दिल आया हूँ।

0: परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रम। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.3 MHz पर। श्रोताओं, दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, इन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने लोगों से घबराहट में पेट्रोल डीजल की खरीद और भंडारण नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईंधन की बढ़ती मांग के बावजूद पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। राज्य में सहकारिता उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध है। वहीं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर कई स्थानों पर मेडिकल स्टोर बंद रखे गए हैं। एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर यह बंद रखा है। जयपुर में जीएसटी चोरी और फर्जी बिल मामले में वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। सघन जांच के दौरान अवैध आईटीसी के जरिए करीब 13.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में मुरलीपुरा निवासी नितेश कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया गया है। उसने विभिन्न फर्मों के जरिए फर्जी बिलिंग कर जीएसटी चोरी की थी। प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा कड़ी सुरक्षा और एआई आधारित निगरानी के बीच ली जा रही है। 2 पारियों में हो रही इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सभी केंद्रों की लाइव फीड जयपुर स्थित कमांड सेंटर तक पहुंच रही है, जहां आईटी और एआई विशेषज्ञ रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित हवलदार मेजर पीरू सिंह की जयंती आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर झुंझुनू स्थित उनके स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने मां भारती के वीर सपूत को नमन किया। गौरतलब है कि 1948 में जम्मू कश्मीर में दुश्मनों का सामना करते हुए हवलदार पीरू सिंह ने असाधारण वीरता का परिचय दिया था। दुश्मनों की चौकियों को ध्वस्त करते हुए वे गंभीर रूप से घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। दिन के साथ ही रातें भी काफी गर्म हो गई हैं।

0: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए लू का दौर जारी रहने की चेतावनी दी है। 2 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और 14 में येलो अलर्ट बताया गया है। कल चित्तौड़गढ़ 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। इसके अलावा श्रीगंगानगर, अलवर और पिलानी में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। राजधानी जयपुर, फलौदी, चित्तौड़गढ़ और कोटा में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। सिरोही को छोड़कर लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से आगंतुक महात्मा गांधी के AI आधारित 3D अवतार से बातचीत कर सकेंगे। आधुनिक तकनीक से तैयार ये 3D अवतार बापू के विचारों और व्यक्तित्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। ये संग्रहालय का तीसरा AI आधारित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। इससे पहले संग्रहालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI होलो बॉक्स भी शुरू किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको जोड़ते हैं राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से, जहां आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

गुलजार साहब के बोल, गुल मुहर गर तुम्हारा नाम होता, क्या तो गाना है देवता फिल्म का। और अमूमन लोगों को गुलमुहर शब्द से यही एक गाना याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक और गाना है गुलमुहर शब्द से। पहले वो सुनवाते हैं, फिर आपके कमेंट्स की बातें।

ये आशा भोसले की आवाज नीरज के बोल, और ये जो गाना है ये बहुत ही कम चर्चित गाना है। फिल्म का नाम मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और वो कमेंट्स जो हैं अब आप तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर शब्द के दूसरे गाने का इंतजार रहेगा क्योंकि हमें तो याद नहीं है, हमारे फिल्मी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने आज का टेक्स्ट पढ़ के ये अंदाज़ा लगाया है कि कौन कौन से गाने हो सकते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि गुलमोहर के लाल लाल फूल खिल गए, ये दूसरा गीत गुलमोहर शब्द पर आधारित है। ये किसी श्रोता के पिताजी ने उनको ये सजेशन दिया है। इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता कहते हैं कि आज पंछी नदियां पवन के झोंके ये गाना ज़रूर सुनाई देगा। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक नहीं दो गुलमोहर के पेड़ हैं, एक बगीचे में और एक सड़क के किनारे, सच मानो जैसे गले लगने के लिए तैयार हैं। आज सुबह देखा एक छोटा सा पंछी गुलमोहर पर अटखेलियां कर रहा था। ज़रा सोचिए कि गर्मी जैसे जैसे अपने शबाब पर होती है, दो ऐसे पौधे या पेड़ हैं जो ज़्यादा ही खिल उठते हैं, एक तो गुलमोहर और दूसरा गुलाबी रंग का जो बोगनविलिया होता है। यूँ लगता है जैसे कड़ी धूप

का इन पर कोई असर नहीं है। मानो जिंदगी में हमें ये सबक सिखा रहे हों कि धूप कितनी भी तेज हो, आपको अपनी चमक नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ते हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये गाना आज के इस कार्यक्रम में आ सकता है। उसके अलावा मन क्यों बहका आधी रात को, ये भी आ सकता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल लंबी सी रिसर्च कर डाली है, फूलों की महक, ये जो जुमला था ये हमारे आज के टेक्स्ट में शामिल था। तो कई सारे गाने उन्होंने लिखे हैं, ए गुलबदन फूलों की महक, उसके अलावा इन्होंने फूलों के रंग से, और फिर और भी, अरे बाप रे, इतने सारे गाने लिखे हैं। बहुत लंबा ये कमेंट है जिसमें फूलों पर पूरी जैसे रिसर्च कर दी गई है, सुंदर बात। इसके अलावा एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने शानदार तरीके से कुछ ऐसे गानों का जिक्र किया है जो आज के इस कार्यक्रम में बज सकते हैं, तो ये कमाल की बात है। और उसके अलावा अभी एक श्रोता लिखती है कि यूनुस जी, गर्मी वाकई इतनी तेज हो गई है, इस समय हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं बड़ौदा से अजमेर की तरफ, कोच में तो एसी की ठंडक है लेकिन बाहर आग बरस रही है। ट्रेन जब साबरमती नदी के ऊपर से गुजर रही थी तो हमने देखा नदी लगभग सूखने की कगार पर पहुंच गई है। अहमदाबाद की शान साबरमती नदी इतनी ज्यादा सूख गई है पर किनारे पर पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, गजब। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज का जो आपने पैराग्राफ पोस्ट किया है उसमें पेड़, पहाड़, नदी, पंछी, सागर, फूलों की महक जैसे दिख रहे हैं, इन सब पर गाने सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने जिया की पीर पर अपनी बात लिखी है। जाहिर है टेक्स्ट में जब जिया की पीर शब्द हो तो आप पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गाना कौन सा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये गाना सुनवाते हैं, साथ में ये सवाल कि फिल्म दस्तक के निर्देशक कौन थे, एक तो ये बात, और फिल्म दस्तक के लिए किस किस को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

ये गाना जब खत्म हो जाता है तो लगता है अरे ये तो खत्म हो गया। इतना दिल की गहराई तक पहुंचने वाला गाना, मदन मोहन जी की ये आवाज और इस गाने को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाती है ये आवाज। एक श्रोता लिखते हैं कि दस्तक राजेंद्र सिंह बेदी ने निर्देशित की थी और ये उन्हीं के लिखे एक नाटक पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1 मई को सुरीला सफर कार्यक्रम का पहला एपिसोड आपने किया था और अब आप इस कार्यक्रम में दूसरी बार आ रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि दस्तक फिल्म के लिए संजीव कुमार और जया भादुड़ी को नेशनल अवार्ड दिया गया था। भाई जया जी इस फिल्म में कहाँ थी? मैं आपको बताता हूं, दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था संजीव कुमार को, रेहाना सुल्तान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, मदन जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और एक शानदार अवार्ड था कमल बोस को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बी आर इशारा को अवार्ड मिला था, ये तो समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलमोहर शब्द का जो दूसरा गाना आपने सुनाया वो मैं पहली बार सुन रही हूँ। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चर्चित गाना नहीं है। इसके अलावा सही उत्तर कई श्रोताओं ने दिए हैं, नेशनल अवार्ड वाले जो दस्तक फिल्म से जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि जिस भी शहर, जिस भी इलाके, जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं, किस किस के इलाके में गुलमोहर और उसके अलावा अमलतास इस समय बहुत खिल रहा है, बहुत ज़्यादा खिल रहा है। अमलतास की झालरें कितनी खूबसूरत होती हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आप फूल अमलतास की तस्वीर भी अगर आपके आसपास है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकें तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। और गुलमोहर और अमलतास से आपको कितना लगाव है? इसके अलावा चंपा, इन तमाम फूलों पौधों के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपने अपने घर में, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या अगर आप ज़मीन पर आपका घर है, तो अपने बगीचे में कौन कौन से पौधे और फूल लगा रखे हैं, इसका भी जिक्र ज़रूर कीजिएगा। कुछ और कमेंट पढ़ते हैं। एक श्रोता है कि व्यस्त होने के कारण मैं देर से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि आज गाने पर्वत सागर किनारा गुलमोहर नदी पंछी जैसे शब्दों पर आएंगे। बिल्कुल सही है। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर की टहनियों पे ख्वाब सा बिछ गया है, दिल हमारा आज फिर से इश्क में गिर गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो ये लिख रहे हैं कि गुलमोहर शब्द वाला जो गुलजार साहब का गाना है उसका अंदाज़ा तो लगभग सभी श्रोताओं ने लगा लिया था। और भी तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि अब हो गए हैं 1:17 और विविध भारती पर गूंज रहा है ये गाना। तब तक आप बताइए कि आपने अपने घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और आपके गमलों में कौन से फूल खिल रहे हैं।

इतना इंटेंस गाना है कि दिल की गहराइयों में उतर जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आपने गुलमोहर और अमलतास की तस्वीर तो मंगा ली, लेकिन विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो कमेंट हम करते हैं उसमें तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं इस बात से वाकिफ नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं। कोई बात नहीं, अपने कोशिश की आप सभी का धन्यवाद। एक श्रोता लिखती है कि हमारे घर में बोगनविलिया बहुत रंग के खिले हैं और इसके अलावा गुलाब के बहुत सारे फूल हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने तुलसी का पौधा लगा रखा है और उनका फेवरेट फूल गुलाब है। वो कहती हैं कि हमारे शहर में गुलमोहर नहीं दिखता, लेकिन यात्रा करते समय रास्ते में जब गुलमोहर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करते हुए मोहल्ले में गुलमोहर, अमलतास, पलाश और कचनार के बड़े बड़े पेड़ जब दिखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलमोहर और अमलतास के बहुत खूबसूरत पेड़ हमारे घर के आसपास हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने गुलाब, जूही, रात की रानी और शेवंती लगा रखा है। एक श्रोता हैं जिनका कहना है कि गर्मी होने पर भी इनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मेरे घर पर आसो पालव, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज़्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर हैं। एक और श्रोता हैं जिनके आसपास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं मेरा पूरा पटना शहर अमलतास, गुलमोहर के पेड़ों से भरा हुआ है और पार्क में चंपा भी खिले हुए हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने मनी प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले वृक्षों से पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने गुलमोहर, अमलतास, सेवंती, चंपा, इन तमाम फूलों की बातें लिखी हैं। ये फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा, बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम जो गाना बजाएंगे उसमें नदी की बात करेंगे। आपके आसपास कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है? किस नदी के किनारे वक्त बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये बात लिखिएगा। शगुन फिल्म की हीरोइन कौन थी ये भी बता सकते हैं आप।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। भाई सृजन भारती के इस आयोजन के बारे में हमने आपको सूचना दी। मुंबई के जो श्रोता हैं वो जरूर आएं कल शाम 6:00। एक बेहतरीन आयोजन और विविध भारती के सभी साथियों से मिलने का और सेल्फी लेने का मौका तो होगा ही होगा इस आयोजन में। तो जो मुंबई और आसपास के श्रोता हैं, अगर संभव है आपके लिए तो ज़रूर आइएगा। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ गए। मैं तो नर्मदा जी के किनारे महेश्वर घाट पर समय बिताना चाहूँगी, देवी अहिल्या की राजधानी में। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता राजस्थान से हैं, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी भीषण गर्मी में भी जो पेड़ हरा सघन छोटी पत्तियों से आच्छादित रहता है और मरुभूमि के सभी जीव जंतुओं को घनी छाया और भोजन देता है, इसकी फलियों से सुप्रसिद्ध और स्वादिष्ट सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, वो है खेजड़ी, संस्कृत में से शमी वृक्ष कहते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं गोमती माँ बहती है हमारे शहर में और रिवर फ्रंट पर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो बनारस के हैं और 80 घाट के किनारे बैठकर गंगा नदी की लहरों को देखना बड़ा सुकून देह होता है। शगुन फिल्म की जो हीरोइन है उनके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिख दिया है भाई कि वो वहीदा रहमान हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती हैं कि फ्लैट में रहती हूँ और सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों की बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं, मैंने बहुत से अपने फ्लैट में गमले में पौधे लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक श्रोता है जो सूरत से हैं और कहते हैं कि तापी नदी है लेकिन अफसोस है कि उस नदी में थोड़ी गंदगी हो गई है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अहिल्या नगर में रहते हैं और यहाँ बहुत गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता के शहर के पास गक्कर नदी बहती है। एक श्रोता ऐसी हैं जो गंगा नदी के किनारे रहती हैं और मायके गई तो सोन नदी के किनारे और पटना शहर में गंगा नदी के किनारे घूमना बड़ा सुखद होता है, ये कह रही हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मैं नागपुर में रहता हूं और कन्हान नदी चूंकि 15 किलोमीटर दूर है इसलिए बहुत दूर लगती है और वहां जाना मुश्किल होता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता हैं माधु मालती गुड़हल और बारामसी के पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमलतास का पेड़ उनके घर के सामने वाले गार्डन में है और चाहे कितनी भी धूप हो इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो बहुत ही ठंडी हवा मिलती है और राहगीर अक्सर इस पेड़ के नीचे गर्मी से राह पाने के लिए, निजात पा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि गुलमोहर को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और शानदार है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और बहुत इतने कमेंट्स हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स पढ़ने में तो बहुत देर लग जाएगी। बात नदी के गाने की हो रही थी, कितने सारे श्रोताओं ने नदी के गानों की बात की, तो मैंने सोचा कि एक मोंटाज कर लेते हैं।

लेकिन लेकिन नदी का ये गाना भी क्या है, प्यारा है। और नदी के गानों का सरताज ये भी तो है, लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है। किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था ये जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाएगा।

क्या शानदार गाना है, नदी के किनारे पिकनिक की जो यादें हैं उसे ताजा कर देता है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कोशिश के सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाएं। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन कभी बहुत धीरे धीरे अपने उत्साह वापस ले लेता है, तब उन धीमे दिनों में चटकती गर्मी में गुलमोहर को देखना और ऊंचे पहाड़ों को भी और एक कदम बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने जिया की पीर कह देना, ये पर्वत ये पहाड़ ये पेड़ आपका सारा दर्द सोख लेंगे, कभी ये करें तो जीवन महक उठेगा। शानदार बात आपने लिखी है। बस यही तो आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए टेक्स्ट पोस्ट करने का मकसद था, कुदरत से जुड़ें और उसके साथ अपने दुख दर्द साझा करें। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि डबरा के पास धूमेश्वर महादेव का मंदिर, सिंध नदी अपने रौद्र रूप में थी, हम लोग गए थे पिकनिक पर, बेटा बैठा था, अचानक पानी बढ़ गया, तब पुलिस ने एकदम अलर्ट किया और हम लोग एकदम हड़बड़ा के वहां से भागे थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में नदी के गानों का जो मोंटाज आपने प्रस्तुत किया उससे बहुत ही ठंडक महसूस हुई, शुक्रिया आपका, मकसद यही था। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा नदी के किनारे वक्त गुजारने का मौका मिला था, बड़ा सुकून मिला था, ये एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो अमर प्रेम फिल्म के गाने को याद कर रहे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो गुड़हल के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है और इसके तमाम तरह के फायदे के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पींच नदी है, वहाँ हम पिकनिक मनाने गए थे, खाना पकाया था और बहुत मौज मस्ती की थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोंटाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ 5 गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर का किनारा है, जहाँ जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्हें समंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो समंदर के किनारे जा चुके हैं या रहते हैं?

0: बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई में जुहू बीच और अक्सा बीच बहुत बार देखने का मौका मिला है और चेन्नई में मरीना बीच भी देखा है और लहरों के बीच जाकर आनंद लिया है। एक और श्रोता है जिन्होंने मुंबई में जुहू चौपाटी कई बार देखी है और शाम के समय डूबते सूरज को देखना दिल खुश कर देता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने पुरी, गोपालपुर, चांदीपुर और पारादीप के समुद्र तट देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मुंबई, पणजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी, इन तमाम जगहों पर जाकर देखा है समुंदर का किनारा। एक और श्रोता कहते हैं कि 2003 के आसपास वो मुंबई में रहते थे और जुहू और हाजी अली के किनारों पर जाने का मौका उन्हें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए कई राज्य हैं और कुछ इलाका अरब सागर से जुड़ा है, कुछ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ इलाका भी है। फूलों के बारे में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। लाल गुलमोहर के अलावा जामुनी रंग के गुलमोहर, जिसे जकरांडा एवं नीला गुलमोहर कहते हैं, वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के महीने में इस पेड़ में बहुत फूल आते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट में तो बहुत ही आकर्षक गुलमोहर होते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं कि कन्हान नदी हमारे शहर के पास बहती है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भोपाल के हैं, चारों तरफ तालाब, जंगल और पहाड़ हैं, गुलमोहर के गोल्डन शावर की बहार है। और दिल्ली के एक श्रोता कहते हैं कि यमुना नदी है तो सही, लेकिन प्रयागराज जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। एक और श्रोता भेड़ाघाट को याद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप नदियों को, सागर को, सबको याद कर रहे हैं। और अब चूंकि टेक्स्ट में हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था, तो अब ये गाना,
1: अपने
0: इस गायिका का नाम बताइए, ये कौन है?

मुबारक बेगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियाँ, ये समंदर, ये खाड़ियाँ, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के नज़ारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सूनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है, इसे लिखा किसने है ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे उसमें सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था।

अर्थ फिल्म का ये गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीक की हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार, सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।

बहुत ही प्यारा और बहुत पसंदीदा गाना इस वक्त आ रहा है। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी ये बताइएगा।

क्या बात है, इतना सुंदर ये पंछी का गाना, बंदिनी फिल्म का गीत, और इस फिल्म में नूतन ने क्या गजब अभिनय किया था। इतने सारे श्रोताओं के समंदर और नदी पर कमेंट आ रहे हैं कि आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट्स पढ़ने होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि उड़ीसा में जो कटक शहर है, दो नदियों के बीच बसा है, महानदी, और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे काठजोड़ी नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कटक बसा है। शहर के चारों तरफ पुल हैं और कटक को पानी का शहर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स, सोमनाथ, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल का समुद्र देखा। कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि उन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र हैं वो सभी देख रखे हैं। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि विविध भारती परिवार है और हम अपना सुख दुख यहीं से साझा करते हैं। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहती हैं मैं अपने पति से, एक श्रोता हैं जो अपने बेटियों से अपने सुख दुख साझा करती हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और इतनी सारी बातें हुई फूलों की, पंछियों की, मैंने बताया कि विविध भारती के कंपाउंड में बहुत सारे तोते आते हैं। आपके आसपास, आपके घर, आपकी खिड़कियों पर कौन से पंछी आते हैं ज़रूर बताइए। और अब आ रहा है फूलों का गाना, वो गाना जिससे सभी को बहुत प्यार है, पर आपको ये बताना है कि आपको किस फूल से सबसे ज्यादा प्यार है। किसी एक फूल का नाम लो।

कितनी सुंदर बात है, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है, और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि तोते, काबर, कोयल, कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नज़र आते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रही हैं कि इतने सारे पंछी नज़र आते हैं, सबको नाम से नहीं जानती पर मैना को पहचानती हूँ। सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं, और अब चूंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो आज का आखिरी गाना है। आज का सुरीला सफर कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।

0: वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीकू वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर, 21 मई शाम 6:30 पर, लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
3: बहुत बहुत शुक्रिया, आज का कार्यक्रम आपने यूनुस खान के संग सुना। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आज बुधवार का दिन है और तारीख है 20 मई। कैलेंडर की तरफ आप देखेंगे तो सोचेंगे ये कौन सा खास दिन है, लेकिन आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खियों का दिन, मतलब इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बताता हूं कि मधुमक्खियां हमारी जिंदगी के लिए और इस दुनिया की सलामती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मधुमक्खियां परागण करती हैं और ये मधुमक्खियां हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। सन 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था और ये दिन मनाया जाता है मधुमक्खी पालन के जन्मदाता एंटोन जानसा की जयंती के मौके पर। मधुमक्खियों को बड़ी तेजी से खत्म किया जा रहा है और इससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूल पौधे और फसलें नहीं होंगी। खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए, साथ में सोचिए मीठा बोलने के बारे में।

0: खड़ूस।
1: सौ में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की। अपना ये माल

बचपन में हम सबको किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि मधुमक्खियां फूलों का रस लेती हैं और पराग के कणों को यहां वहां बिखेर देती हैं। इस तरह से नए पौधे पैदा होते हैं और इसी तरह से दुनिया में हरियाली बढ़ रही है, फूल बढ़ रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं। पर आजकल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे मधुमक्खियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराता चला जा रहा है और इसका सीधा सीधा असर हमारे यहाँ फूलों और पौधों की विविधता पर भी पड़ रहा है। आप अक्सर ही देखेंगे कि कॉलोनियों में या ऊंची ऊंची इमारतों में मधुमक्खियों के छत्ते पड़ जाते हैं और उन्हें हटाने के लिए लोगों को बुलवाया जाता है। उसके बाद आप राहत की सांस लेते हैं कि हमने मधुमक्खियों को हटा लिया, हमें सुकून मिल गया। पर जरा ये सोचिए कि ये मधुमक्खियां पर्यावरण के संतुलन के लिए कितनी जरूरी थीं। उनकी जगहों पर आपने कब्जा कर लिया और इसलिए मधुमक्खियां आपके घरों के छज्जों पर अपने घोंसले बना रही हैं, अपने छत्ते बना रही हैं। वो कहां जाएंगी, इसके बारे में किसी ने सोचा? खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए और सोचिए फूलों को बचाने के बारे में, जो मधुमक्खियों की जीवन रेखा है।

20 मई का दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है और त्रिवेणी के जरिए हम आपको रोज किसी न किसी मुद्दे पर जागरूक करते हैं। आज मधुमक्खी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जरा सोचिए कि मधुमक्खियां फूलों का रस ग्रहण करती हैं और उसे शहद में बदल देती हैं, यानी मधुमक्खियों का जीवन संसार में मिठास बढ़ाने को समर्पित है। हम मधुमक्खियों से मीठा बोलना सीख सकते हैं, हम मधुमक्खियों से संसार का भला करना सीख सकते हैं, हम मधुमक्खियों से ये सीख सकते हैं कि दुनिया में बोलों की मिठास बढ़े। लेकिन ये जो मीठे बोल है ना, कई बार इनके पीछे भी कुछ बदमाशियां और चालाकियां छिपी होती हैं और बड़े बुजुर्ग कह गए हैं।

मीठी मीठी मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी।

0: मत्ते मैं निकल पड़ूंगा।
1: शाबाश, मीठी मीठी बातों से मीठी मीठी मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
2: आज की त्रिवेणी थी विश्व मधुमक्खी दिवस पर। ये त्रिवेणी आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग सुनी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल UL PGM MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यूएलपीजीएम V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
3: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के दो जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
5: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज़ में संगम फिल्म के गाने के साथ। बोल हैं हसरत जयपुरी के और तर्ज शंकर जयकिशन की।

हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं एस एच बिहारी और संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

अगला गाना हमने लिया है वक्त फिल्म से, इसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताती है,
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में भावी फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज़ में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुनिए ये गीत और अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस थोड़ी ही देर में।

0: की सहेली।
1: कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार। कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत बढ़िया हूँ।
1: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ, क्या बात है।
2: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
1: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
2: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
1: अच्छा,
2: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या।
1: अरे वाह,
2: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
1: क्या बात है, क्या बात है, जब चेहरे की चमक बता रही है
2: बिल्कुल,
1: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी हैं।
2: बिल्कुल,
1: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
2: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
1: अच्छा,
2: वहां जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, उस तब जाओ, वहां तक पहुंचो आप। एक मंदिर है जो वहाँ का प्रसिद्ध, तो लेकिन इस बार था रोपवे शुरू हो गया वहाँ पे।
1: अच्छा,
2: तो बस आप रोपवे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से, किसी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो।
1: अरे वाह,
2: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ, तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
1: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
2: बिल्कुल, और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर मथुरा जा रहे हैं आप, तो

0: आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि
1: हाँ
0: वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को जो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो
1: बिल्कुल
0: जाता है।
1: बिल्कुल
0: इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप
1: हाँ
0: पैदल चलेंगे उतना अच्छा है,
1: वो अच्छी
0: हमने भी।
1: बात है,
0: हाँ
1: लेकिन
0: जी
1: ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ हैं, तीर्थ जगह हैं, स्थान हैं, वहाँ पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है, ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब, वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए।
0: बिल्कुल
1: और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो
0: बहुत
1: तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा, तो
0: जी
1: तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी तुम,
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा
1: ना,
0: लगता है अब
1: और
0: जब तुम भी आते हो।
1: आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा
0: बिल्कुल
1: यात्रा को
0: बहुत
1: करने के बाद, इतनी जगह घूम के
0: जी,
1: आई हो
0: इतने लोगों
1: तो।
0: को देखा, सब कुछ
1: हाँ,
0: किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखी, बहुत अच्छा
1: नई
0: लगा,
1: संस्कृतियों का अनुभव
0: बहुत
1: होता है हमें, नए
0: जी।
1: अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
0: तरह तरह
1: हैं।
0: के व्यंजन आपको खाने के लिए मिलते
1: अरे क्या
0: हैं
1: बात
0: जो
1: है।
0: मेरा बहुत फेवरेट चीज है।
1: हाँ
0: मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहां बनेगी,
1: उसमें
0: लेकिन
1: फर्क होता है
0: स्वाद
1: स्वाद
0: बिल्कुल फर्क
1: का।
0: होता है
1: हाँ, क्योंकि पानी का बनाने वाले का
0: जी,
1: तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना।
0: बिल्कुल, बहुत
1: तो
0: अच्छा लगता
1: यात्रा
0: है,
1: करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा
0: बहुत
1: मानती
0: सुकून
1: हूँ,
0: मिला।
1: और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है तो आप फील गुड महसूस कर रही हैं।
0: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर
1: तो
0: तो
1: चलिए सखी
0: जी,
1: सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है।
0: जी
1: तो अब ये गीत सुन ले।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना?
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो देखिए, आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने ही भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: पर काटती बहुत बुरा है।
1: और काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे। साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तंचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गई है ना
1: जी।
0: और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखें और जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया, ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं। आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल, तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगे दाल पीठा और हमें खिलाएंगी भी।
1: हाँ जी,
0: ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती भी नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी,
1: भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, इस जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की 1/3 खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे परागकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पर ही निर्भर करता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल, सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। 1 पाउंड लगभग 1/2 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
0: बताइए तब जाके हमें शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
1: एक बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने, पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है, और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती है, और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
1: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए ज़रूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियाँ पौधों के निषेचन में मदद करती हैं और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा भी तुमने शुरू में बताया भी था
1: जी। और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
0: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं, काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियाँ हम सभी का पोषण करती हैं।
1: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छत्ता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटेगी
0: करेगी। बिल्कुल,
1: और कि वो आपको डस ना लें, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाकी तरीके से इस चीज को लिखा है।
0: बिल्कुल सही कहा है।
1: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगे, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खी, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: जारी ना बताऊं मैं तो नाम किस चोर का जारी ना बताऊं मैं तो।
1: तो आरती
2: नाम नहीं बताने वाली हूँ चोर का।
1: भाई नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल।
1: तो हम बात कर रहे थे आज की भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
2: अरे बहुत
1: है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियाँ। और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
2: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सकें।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा है।
2: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो
1: नाम
2: भाई थे। और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है। बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक
2: जी, इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में भी
1: मुश्किल है।
2: तो इसमें 1 या 2 ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियाँ बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती हैं और इसमें 1 या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या 2 रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
2: जी, और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिज़ाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिज़ाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
1: हाँ बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिज़ाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
2: बिल्कुल। और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामिति और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो हैं या विवाह समारोह के अवसर हैं या त्योहार हैं हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियाँ अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहां पहना और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
1: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का, तो हमसे शामिल करें।
2: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
1: गीत सुनते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं और उनका आपके जीवन में कहाँ कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना, देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम हैं वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्यप्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमरीका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हैं।
0: बहुत गहरी बात है आरती है, अगर हम इसे समझ पाए तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो वो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
1: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझ में आता है ना, जिस तरीके से जिस भाषा को जानते हैं,
0: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना। हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
1: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने देखा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हो, किसी भी भाषा को सीखते हो, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
1: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम में नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
0: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए, अब हम क्या सीखेंगे, हाँ, ये कभी मत मन में लेकर आइए।
0: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए
1: जी। और साथ ही जो वयस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है, यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना
1: जी,
0: मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है, डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल, आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आप खुद ही अपने आप को, आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
0: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती
1: जी,
0: प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती हैं,
1: सबका नजरिया अलग
0: मायने रखता है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है, और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से, जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां पे ब्रिज भाषा में,
0: कितना अच्छा लगा,
1: बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे
0: हैं, तो अपने करीब पाते हैं ना आपको,
1: बिल्कुल
0: ये हमारे ही लोग हैं, और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है,
1: बिल्कुल जोड़ती है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है, इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है, और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
0: क्या बात है, तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
1: बिल्कुल
0: हमें सीखनी चाहिए, इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शौक रखना चाहिए,
1: अपने मन से सीखिए, आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छे तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
0: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं, किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं
1: जी। जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती, तो हम सच में एकदम से कहने लगते कैसे इतनी भाषाएं बोल लेते हैं,
0: चौंक जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है,
1: बढ़ जाता
0: देखने
1: है।
0: का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: तो एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

भट की घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा के, बिन पारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की तो उस पर एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा छोटा भाई जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया। इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे उल्टियाँ भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया है ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
0: वो
1: कुछ
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आए ना, आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो
1: उछल कर आप पर आएगा। आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम
0: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं। अगर आपने इनको छेड़ दिया,
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही ततैया भी बहुत बुरा काटता है, जो पीले रंग का होता है वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो चलिए भाषा पर बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
0: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक श्रोता जो लिखते हैं मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है।
1: हाँ।
0: और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
0: बहुत बड़ी भाषा है,
1: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
0: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे 2-3 और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कहे ना श्रोताओं के जो विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है।
1: बिल्कुल,
0: वो जो उनके अंदर चीजें ना वो विचार सामने आते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं और ये न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृतियों, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, 2-3 भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है। हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है। और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है। और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत सिद्धांत भी सिखाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
0: भाषा भाषा है,
1: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
0: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
1: चलिए आपको भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
0: भाषा कभी बुरी नहीं,
1: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
0: जी
1: एक गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं, और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार। मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो अर्थ है
0: वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार, और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसे कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका।
1: बिल्कुल,
0: ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं?
0: अब मूल्यवान तो ये गीत ही है
1: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल, और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़, घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें, एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में से छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं, एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें, जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
0: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे
1: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पे मिल जाएगी।
0: तो बनाने की मैं भी
1: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी है
0: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं, आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताज़ा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है सर। बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहाँ एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहाँ ले गई?
2: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
3: जी
2: अल्मोड़ा हुआ।
3: अरे गजब, पहाड़ों पर।
2: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
3: जी,
2: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
3: अच्छा।
2: तब तक शुरू नहीं हुआ था
3: जी।
2: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
3: जी, जी।
2: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
3: जी,
2: वो एक अलग अनुभव था
3: जी।
2: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहाँ चलते चले जाओ, चलते चले जाओ,
3: हाँ।
2: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो
3: हाँ, हाँ।
2: तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, घूमने जाओ तो

0: बात है
1: जी,
0: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो,
1: हाँ,
0: कभी रहा ना हो,
1: हाँ, हाँ,
0: तो वो उसके लिए वो, तो वो कठिन दौर था, लेकिन वो गुजरा और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहाँ से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
1: अच्छा,
0: 86 में।
1: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
0: और वो भी सब भी देखा हमने, वो पंत जी अग्गे जी वहाँ पे
1: हाँ,
0: रहे, और रविशंकर जी का वहाँ पे वो था, है ना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: यस,
0: ये सब भी,
1: उदय शंकर जी का
0: उदय
1: था
0: शंकर, सॉरी उदय
1: जी
0: शंकर जी का, तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब,
1: जी
0: कि ये सब कुछ। लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
1: रहते
0: रहेंगे
1: कैसे
0: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं, कि
1: जी
0: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है पहाड़ों में कैसे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये था।
1: मुंबई 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे, क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
0: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो ये सपनों की नगरी थी,
1: जी
0: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही ख़राब है, उस वक्त ये 86 में जब हम आए आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफ़र, लोकल ट्रेनों का सफ़र, एक
1: जी
0: अलग ही दुनिया थी, लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पे थे, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है
1: हाँ
0: उस
1: हाँ
0: पर, वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम,
1: बिल्कुल।
0: है
1: और तब तो लंबी लाइनें
0: ना, हाँ
1: हुआ
0: वो
1: करती
0: लंबी
1: थी
0: लाइनें हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो एंटॉपिल की थी वहाँ रहे, और फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर इधर आना एंटॉपिल से किंग सर्कल आना, वहाँ से पैदल
1: जी
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस सब शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई ट्रेन
1: हाँ,
0: में
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से
0: हाँ
1: ढाल लेता
0: तो फिर
1: है
0: वो लोग अपने आप आपको उतार देते
1: जी।
0: हैं तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
1: जी,
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार
0: तो ये
1: देंगे
0: उतार, तो
1: जी।
0: ये
1: तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
1: चरम
0: पर
1: पर
0: थी,
1: थी
0: चरम
1: जी
0: पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी,
1: जी
0: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे, मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त ये
1: बजाया करते थे
0: बजाया
1: उसको
0: करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गज़ल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुँचो और
1: बिल्कुल।
0: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुँचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है, क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं, कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यार है,
1: बल्कि
0: बहुत
1: हमने
0: प्यार।
1: उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं,
0: जी,
1: तब मैं
0: सही
1: था
0: सही।
1: नहीं शहर में
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज़, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में, युवाणी में जो अपनी आवाज़ पहली बार मैंने रिकॉर्ड की,
1: जी
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज़ को आकाशवाणी में सुनकर जो
1: जी
0: खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में अपनी गज़ल सुन के हुई थी,
1: क्या
0: हाँ
1: बात
0: ना।
1: है,
0: तो वो
1: क्या
0: किसी गज़ल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गज़ल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई, तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ, वो
1: पेडर रोड
0: हाँ पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था, तो
1: जी
0: मैं गया, और उस समय का वक्त था। तो मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
1: जी
0: जगजीत सिंह साहब रोज़ सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे,
1: जी
0: रोज़ रियाज करना उनका काम था। जब बॉम्बे में होते थे
1: जी
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर फिर रियाज पे, फिर रियाज पे। तो ये तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गज़ल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग आपका मिलना ही बड़ी बात थी उनसे
1: जी,
0: हाँ वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गज़ल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
1: वाह वाह।
0: अक्सर होता है कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, है ना
1: जी।
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
1: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे?
0: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब,
1: ये जो जिंदगी की किताब है। वाह वाह वाह।
0: तो ये वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत हैं, मुझे एक हल्की फुल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ हाँ
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ,
1: जी।
0: और वो गजल जो मैंने कभी आज तक छुई नहीं,
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती।
1: गजब।
0: तो वो गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
1: जी। ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई
1: जी,
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है, उसको हाँ वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: ये जो जिंदगी की किताब है।

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गज़ल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गज़ल वो गज़ल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ ऐसे कमेंट्स हैं उस गज़ल पे। तो ये गज़ल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुँचा दिया, यूँ कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी उसके बाद,
0: जी।
1: ये गज़ल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले थे, ये गज़ल थी वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर, तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गज़ल पहली नज़र में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गज़ल से जुड़ा एक और भी किस्सा, कि ये गज़ल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गज़ल थी, लोगों ने बहुत पसंद की सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील था
1: नबील, नबील,
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गज़ल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था दूरदर्शन पर आता था गज़ल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गज़ल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या एक नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गज़ल। तो ये गज़ल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही
1: दो
0: में
1: घंटा था।
0: गाया
1: हाँ, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गज़ल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गज़ल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गज़ल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने
1: हाँ,
0: ये बात
1: ये मेरे
0: कही
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गज़ल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गज़ल है। तो बोल, ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
0: हाँ,
1: सीरियल है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बड़ा नाम है अजय
1: हाँ।
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गज़ल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था।
0: जी
1: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गज़ल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
0: जी
1: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहाँ पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहाँ, गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गज़ल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना, फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूज़िक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया,
0: हाँ बिल्कुल
1: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया, या कुछ मिसरा गलत हो गया, या कुछ मैंने कुछ कमज़ारा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया। हाँ, ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर। उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए मजरू साहब, उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गज़ल थी ये। तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था, तो
0: जी।
1: नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गज़ल है, अलग गज़ल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
0: वाह वाह वाह
1: तो ये
0: वाह,
1: मजरू
0: मजरू जैसे
1: सुल्तानपुरी साहब का
0: बड़े
1: आशीर्वाद था,
0: शायर की बात
1: है
0: है
1: ना।
0: ये,
1: तो इस गज़ल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
0: क्या बात है। पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।
1: जी।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफ़र तो मेरा ज़्यादातर तो शायरी का ही रहा,
0: जी
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है।
0: जी
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल, बहुत ही मशहूर
1: मशहूर
0: जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है
0: जी,
1: लेकिन एक ज़माना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी,
0: जी
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: कैफी आजमी, मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना,
0: जी
1: बशीर
0: जी
1: बद्र, निदा साहब, निदा साहब उसके संचालन कर
0: सदर,
1: रहे थे,
0: जी
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे
1: अजीत एक्टर,
0: जी,
1: और भी और कई तो फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू
0: अलग
1: सेंटर
0: ही
1: के
0: होता था।

0: हुआ करता था,
1: जी
0: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
1: क्या बात है।
0: मेरा पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा, तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
1: अरे बाप
0: तो
1: रे,
0: शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
1: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
0: तो उन्होंने मुझे माइक पर बुला, मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग है
1: जी
0: ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज़ राशिद और जफ़र गोरखपुरी,
1: हाँ
0: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफ़र गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता है। तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, ये प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया,
1: अरे अब
0: मतलब
1: तो
0: ये
1: शुरुआत कर रहे थे जबकि।
0: हाँ
1: जी
0: मुशायरा तो हो गया,
1: अरे
0: मतलब
1: बाप रे, बहुत
0: ये
1: बड़ी बात
0: हाँ,
1: है।
0: तो ये बड़ी बात थी। तो
1: जी
0: ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना,
1: जी
0: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया अपने
1: गजब
0: घर पर, और
1: जी,
0: उनसे वहाँ से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गज़ल मैं सुन जो बता रहा हूँ जिसके बारे में,
1: जी
0: ये गज़ल जगजीत सिंह साहब को भी बहुत पसंद थी,
1: हाँ
0: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
1: हाँ
0: आखिरी एल्बम था ये।
1: ओहो
0: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे
1: चले
0: दुनिया
1: गए।
0: में,
1: जी
0: वो
1: जी
0: चले गए,
1: जी
0: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ। चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे, नहीं करेंगी।
1: जी
0: तो ये गज़ल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गज़ल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
1: जी
0: और दूसरी आसमान से आगे,
1: बिल्कुल
0: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें। हाँ, तो मैं
1: बिल्कुल
0: उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
1: जी।
0: तो किताब लेके वो रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके भी चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गज़ल गाई, दूसरी गज़ल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गज़ल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गज़ल जो मैंने अभी गाई, ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन
0: कर दिया,
1: खोला
0: रिबन खोला, ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियाँ वालियाँ सब हो गई, और मैं स्टेज से उतरने लगा।
1: जी,
0: तो बोले नहीं राजेश रुकिए, तो मैं आया, तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है
1: हाँ
0: पूरा,
1: बाकायदा, और पूरा
0: हाँ
1: हॉल
0: पूरा
1: भरा हुआ
0: हॉल
1: है।
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए,
1: अरे
0: स्टैंडिंग
1: बाप रे।
0: माइक दीजिए। हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गज़ल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे।
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
1: जी
0: उनको
1: जी
0: पसंद थी गज़ल, तो सारे तो वो गज़ल पढ़ी, जाने कितनी उड़ान बाकी। तो बात वहीं ख़त्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी। हो
1: जी
0: ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की, और जगजीत जी म्यूज़िक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब,
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: जी जी
0: आज
1: जी
0: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: गजब गजब,
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूँ और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वो उसे गा रहे हैं,
1: अद्भुत
0: ये
1: अद्भुत।
0: अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
1: अरे
0: क्यों नहीं लगे,
1: बाप रे यार, ये तो
0: और
1: बड़ा
0: आपको
1: मिस
0: मालूम
1: हुआ।
0: था कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
1: वाह
0: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गज़ल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ जान।

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: रिजल्ट का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके,
1: वाह
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके, जिनके मुंह में
1: जबान बाकी है।
0: जुबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार
0: है।
1: शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे, उजाले,
0: उनकी
1: उनकी
0: यादों
1: यादों
0: के
1: के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी
0: सखी
1: सहेली आपके
0: सहेली।
1: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
0: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से।
1: जी
0: मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने
1: बिल्कुल
0: मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूँगा, तो सबसे पहले यूनुस,
1: अरे राकेश जोशी जी,
0: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे एक तरह
1: सब
0: से।
1: चीजों को
0: हाँ,
1: संभालते
0: सब कुछ सब संभालते थे।
1: थे
0: तो एक अच्छी टीम थी
1: जी,
0: जो हर तरह से, जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट था वो था, और
1: बिल्कुल
0: वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ, मतलब
1: जी,
0: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया।
1: बिल्कुल। और हर
0: ऐसा कम
1: रोज आप
0: होता
1: एक
0: है,
1: नई चुनौती
0: ऐसा
1: सामने
0: कम
1: रखते
0: होता
1: थे
0: है।
1: जी।
0: तो हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है उसके
1: नौशाद
0: साथ
1: साहब आ
0: कहीं।
1: रहे हैं,
0: हाँ
1: खयाम साहब आ
0: हाँ
1: रहे हैं
0: खयाम साहब आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए,
1: जी,
0: आनंद जी आए, है
1: बिल्कुल
0: ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आया यहाँ पे, तो
1: बिल्कुल।
0: सारे। और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग, है
1: रवि जी
0: ना।
1: आए,
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: खयाम साहब,
1: खयाम साहब आए, और
0: हाँ
1: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है।
0: हाँ तो बड़े
1: हाँ
0: बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
1: मुझे याद है कि
0: हमारे
1: खयाम
0: मेहमान।
1: साहब, नौशाद साहब आए हैं,
0: हाँ
1: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं,
0: हाँ
1: और वहीं 1 घंटे बात हो रही
0: हाँ हाँ उनको
1: है।
0: वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था, वो
1: जी
0: अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का, और
1: बिल्कुल
0: उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे और देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के भी हमने ये भी किया कि इनको हमको ज़ाया नहीं करना है कि 1 घंटे में बांध लिया, 2 घंटे में बांध लिया। उनको कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम
1: ज्यादा
0: उनके
1: कर
0: ले
1: सकते
0: सकते
1: थे
0: हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं। ये लोग
1: जी,
0: अब कहाँ आएंगे अब इस दुनिया
1: बिल्कुल
0: में। तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं
1: किसी
0: है,
1: के पास नहीं
0: किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशंस पे है,
1: जी।
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो हैं, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो हैं, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी। या
1: बिल्कुल
0: गानों पे बातें हो रही हैं, या गाने कैसे बने उस पे बातें हो रही हैं, है
1: जी,
0: ना। आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा,
1: एक से बढ़ के एक
0: एक से
1: चीजें
0: बढ़कर
1: हैं,
0: एक
1: एक से
0: प्रोग्राम
1: बढ़
0: जो
1: के
0: है
1: एक हैं
0: वो हुए। प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर
1: और
0: और
1: ट्रिब्यूट
0: पूरा
1: हो रहा है
0: प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये
1: जी
0: सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं
1: जी
0: हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून

0: वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
1: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
0: जी।
1: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए।
0: जी जी,
1: तो ये भी हुआ है। और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में,
0: बिल्कुल,
1: तो उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
0: जी।
1: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
0: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था। दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है, और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी,
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बड़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं
0: जी
1: मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था,
0: जी
1: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़ी पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था,
0: जी
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है,
0: जी
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है
0: ओके
1: घर में, तो वहाँ तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ, फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो हैं, वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे।
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, अब मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब यह था, तो
0: जी
1: वो सब
0: जी
1: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
0: अरे वाह,
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने
0: अरे
1: घर चला आया,
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ कि हम मैंने शादी कर ली है,
0: हाँ,
1: और तो अब तो
0: कुछ हो नहीं
1: मुमकिन ही
0: सकता
1: होंगी
0: था।
1: नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो
0: हाँ
1: नेचुरली वहाँ से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए,
0: हाँ
1: फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे,
0: हाँ
1: तो मुझे यहाँ से ले जाओ,
0: अरे बाप रे।
1: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब, तो
0: हाँ।
1: मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके, और
0: गजब।
1: हाँ, और हमारे इन फादर इन लॉ जो मौजूद थे,
0: हाँ
1: तो फिर हाँ, आइए बैठिए, चाय वाय पी सब कुछ के बाद, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना,
0: हाँ
1: हम इसको ढंग से करते हैं, इसको करेंगे
0: हाँ
1: उसको, मुझे लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
0: ये नहीं हो रहा
1: ये नहीं
0: है।
1: होने देंगे,
0: हाँ
1: मैं भी चलूंगी,
0: गजब,
1: मैं भी चलूंगी। तो
0: बाप रे।
1: फिर उन्हीं के साथ लोग बाहर आ गए,

0: और हम लोग निकल आए। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है,
1: और
0: तो उन्होंने कहा
1: ये
0: हाँ। तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई। और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
1: हाँ,
0: सारा साहस इनका है,
1: क्या बात है
0: ये उस जमाने में।
1: जी, शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
0: जरूर।
1: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं दो तीन शेर सुनाता हूं।
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ। किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा
1: जिंदगा,
0: क्यों नहीं होता,
1: वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह,
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के
1: कितने
0: कितने
1: हिस्सेदार हैं।
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह
0: मेरी एक
1: वाह,
0: जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर।
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू
1: एक आंसू
0: कोरे कागज पर गिरा,
1: वाह,
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर गिरा,
0: कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
0: एक
1: बात है,
0: आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना
1: गम छुपाना,
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: गम
1: वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या
0: छुपाना
1: बात है
0: कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है क्या बात
0: शुक्रिया।
1: है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं और अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी,
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था,
1: जी जी
0: मतलब किसी
1: डिफिकल्ट
0: लाइन
1: होता
0: को।
1: है ये,
0: हाँ, लेकिन ये गजल मुझे वहां 2 बार पढ़नी पड़ी,
1: क्या बात है,
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई,
1: वाह
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ।
1: इरशाद इरशाद।
0: अब क्या बताएं, टूटे हैं

0: क्या बात है, क्या बात है।
1: थैंक यू
0: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: आज के मेहमान।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। ख्वाबों को मुट्ठी में बटोरे वो बेख्याली में जिंदगी की राहों पर सरपट भागती जा रही थी कि अचानक राह पर पड़े पत्थर से टकरा गई। मुट्ठी में बंद ख्वाबों के जुगनू इधर उधर बिखर गए। उसका एक भला सा नाम था, लेकिन उसकी पहचान नाम से नहीं बल्कि उसके हुनर से थी।

उसके ख्वाबों के मोती राह पर गिरकर टूट टूट कर बिखर गए तो उसका दिल भी टूट गया। उसे दिल के टूटने की आहट हो गई। उसने टूटे हुए दिल से दूसरे ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। बहुत जल्द उसके ख्वाबों की एक नई दुशाला बनकर तैयार हो गई। बस वो ख्वाबों की रेशमी दुशाला पहन रात के सन्नाटे में चांद से बतियाती अपना सफ़र पूरा करने लगी।

ख्वाबों की रेशमी दुशाला ओढ़े वो खेतों मेड़ों से जा रही थी, तभी उसे कहीं से रेडियो की आवाज आई। रेडियो पर बज रहा था मोहब्बत का गीत, प्यार का राग। बस उसे उस गीत से प्यार हो गया और उसके कदम ठिठक गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके ख्वाबों से भी खूबसूरत होता है प्यार का राग।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। रेडियो की आवाज की डोर पकड़े वो खेतों से बाग की ओर चल पड़ी, जहां आम और जामुन के पेड़ों के बीच इत्र की खुशबू बिखरी थी। इत्र की खुशबू में अजब सा सम्मोहन था। उस खुशबू की ओर वो बढ़ती चली गई, फिर सुबह की उगी नरम धूप सी किसी का मुस्कुराता चेहरा था। वो कोई शख्स था या था सपनों का शहजादा, बस वो उस तिलिस्मी शख्स को भर आंखों देखती रही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे? नहीं,

वो दौड़ती फुदकती तितली भौरों के पीछे भागती, कोयल सरीखी मीठी आवाज में कुछ गाती गुनगुनाती, ख्वाबों का सुंदर पिटारा लिए चली जा रही थी। नरम नरम धूप के मैदान से लगी हुई फुलवारी पर उसकी आंखें ठिठक गईं। सुर्ख रंग की पोशाक में वही वो शख्स मुस्कुरा रहा था, शायद ये वही शहजादा था, ख्वाबों वाला शहजादा।

उस शहजादे ने पलकों की पंखड़ी पर फूलों का झुरमुट धर दिया। फिर एक दिन उसने मुट्ठी में एक बीज थमा दिया। उस बीज से प्रेम का अंकुर फूट गया। सुबह के उजास में प्रेम का पौधा जगमग होने लगा। तब से अब तक वो गा रही है प्रेम गीत, फूलों की माला में पिरोती है प्यार के मन के।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम तराने नए पुराने बस कुछ ही पलों में।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें, pmsuryaghar.gov.in पर।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए गीत से। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने। फिल्म का नाम है प्रिंस।

टाइगर जिंदा है। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म में आतिफ असलम को इरशाद कामिल के लिखे इस गीत की धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहां से टेलीफोन।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। और जी मैंने भरी धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
8: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
9: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। जब प्यार किसी से होता है, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, धुन बनाई है शंकर जय किशन ने, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

अब सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में फारूक कैसर का लिखा गीत, आवाजें किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की, फिल्म का नाम काश।

वफाएं कितनी जताई।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे 6:05 से। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। शाम के 6:00 को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा

0: सिपका इंजन है, एआई, क्वांटम स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। अब सुनिए तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने।

0: अभी आपने जंगली फिल्म का गीत सुना, आवाजें नवराज हंस, हंसिका अय्यर और अभिषेक नलवाल की थी, धुन बनाई थी समीर उद्दीन ने, बोल लिखे थे कुमार सूर्यवंशी ने।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है,
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यादों की बारात लीजिए इस फिल्म में, सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार को। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए जानिसार अख्तर का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है खयाम ने, आवाज़ें लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम शंकर हुसैन।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वहम फिल्म का गीत अरमान मलिक की आवाज में। तर्ज बनाई है मनन भारद्वाज ने, बोल लिखे हैं रश्मि विराग ने।

0: कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है महासटैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट कर।
6: श्रोताओं, इसी के साथ आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 MHz पर। कुछ ही पलों में 6:30 पर होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और उसके बाद होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
7: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5,000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में, अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा है कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में रेलगाड़ियों में लगी आग की हालिया घटनाओं की जांच में कई मामलों में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता का पता चला है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बल मामले की गहन जांच कर रहा है। इनमें राजस्थान की भी 2 घटनाएं शामिल हैं। पाली के अमरपुरा स्टेशन के पास एक घटना में एक अज्ञात व्यक्ति ने एक कोच के अंदर कपड़े में आग लगाने की कोशिश की, जिससे आग लग गई। इसी तरह कोटा में राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग की शुरुआत भी बाथरूम क्षेत्र से शुरू हुई बताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने आग लगने की हालिया घटनाओं के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रेलवे ने कहा है कि अमरपुरा जैसी घटनाओं में रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल और LPG का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रमुख तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ पेट्रोलियम उत्पादों और LPG की उपलब्धता की समीक्षा बैठक की। कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद प्रदेश में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं। सभी आउटलेट पर ईंधन वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। श्री गुप्ता ने नागरिकों से घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण नहीं करने का अनुरोध किया है। साथ ही ईंधन उपलब्धता से संबंधित प्रमाणिक और सत्यापित जानकारी के लिए केवल तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने को कहा है। बैठक में IOCL, BPCL, HPCL, GOBP और नायरा सहित प्रमुख तेल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ हालात बेहतर और नियंत्रण में है। श्री राठौर ने आमजन से अपील की कि वे पेट्रोल और डीजल का आवश्यकता के अनुसार सोच समझ कर उपयोग करें।
8: कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए और आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत।
7: प्रदेश के आंगनबाड़ियों में अब बच्चों को उपमा की जगह पौष्टिक न्यूट्री पुलाव परोसा जाएगा। उपमुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने आज शासन सचिवालय में इस नए न्यूट्री पुलाव के सैंपल का स्वाद चखा। उन्होंने कहा कि ये पुलाव बच्चों के स्वाद के ज्यादा अनुकूल है। उपमुख्यमंत्री ने विभाग को इसे जल्द आंगनबाड़ियों में उपलब्ध करवाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने नाश्ते में दिए जा रहे मुरमुरे के स्थान पर भी समान दरों में कोई अन्य बेहतर और पौष्टिक विकल्प तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत विभिन्न नगरीय निकायों में करीब 5,000 नए आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए हरेक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके तहत कुल 125,60,00,000 की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इन आवासों के लिए अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार की 26 मई को होने वाली CSMC बैठक में मिलेगी। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों के तहत विभिन्न शहरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। जोधपुर नगर निगम द्वारा मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग की जा रही है। इसके तहत राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित कलाकृतियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है, जिससे पुराने कचरा पॉइंट अब आकर्षक सेल्फी पॉइंट में बदल गए हैं। पाली नगर निगम द्वारा शहर को सुंदर बनाने के लिए सिटीजन फीडबैक अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने नागरिकों से QR कोड स्कैन कर फीडबैक देने और शहर को बेहतर रैंक दिलाने में सहयोग की अपील की है। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में भी उपलब्ध होगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आज जयपुर में आयोजित सारथी संवाद कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के बाद अब जयपुर में भी ये अनूठी सेवा शुरू होने जा रही है। ये आमजन को किफायती और सुरक्षित सफर का विकल्प देगी। श्री दक ने कहा कि इस सहकारी सेवा में कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं होगी, बल्कि टैक्सी चलाने वाले चालक यानी सारथी ही इसके वास्तविक मालिक होंगे। इससे चालकों को निजी कंपनियों की मनमानी और हिडन चार्जेस से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर मौजूद टैक्सी चालकों ने भी इस स्वदेशी सहकारी पहल की सराहना की। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय ने कोटा मंडल के 3 रेलवे स्टेशनों को जंक्शन स्टेशन घोषित किया है। रेल प्रशासन की इस घोषणा के बाद अब गंगापुर सिटी, रामगंज मंडी और गुडला स्टेशनों को जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। नई रेल लाइनों और कॉर्ड तथा बाईपास के लाइन से शुरू होने से इन स्टेशनों का दर्जा बढ़ाया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन स्टेशनों के वर्तमान अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल कोड पहले की तरह यथावत रहेंगे, केवल उनके नाम के आगे जंक्शन शब्द जोड़ा गया है। राज्य में अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं, वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए विभिन्न स्थानों पर छाया के प्रबंध किए गए हैं और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों के साथ साथ पशु और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म दिन रहा। वहीं बीकानेर में सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जहां पारा 31.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, फलौदी, बीकानेर और चूरू में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। वहीं राजधानी जयपुर में तापमान 42.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री, वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में। अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। चूरू जिले के तालछापर अभयारण्य और उसके आसपास के करीब 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। ये ESZ चाडवास, देवानी, रामपुर, सूरवास और छापर कस्बे में स्थित है। अभयारण्य में काले हिरणों और प्रवासी पक्षियों के कुदरती रहवास को खनन और प्रदूषण से बचाने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार क्षेत्र में व्यावसायिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और भारी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। श्री सुराणा ने बताया कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के अंदर तक किसी नए होटल रिसोर्ट बनाने और व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागों से आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए अभयारण्य क्षेत्र की जैव विविधता और कुदरती वातावरण के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। जिले में इन दिनों मकान सूचीकरण और गणना का काम चल रहा है। जनगणना 2027 के तहत जिले के 21 क्षेत्रों में प्रगणक घर घर पहुंचकर मकानों से संबंधित जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। जनगणना के दौरान प्रगणकों को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिला कलेक्टर ने भी नागरिकों से जनगणना कर्मियों को आवश्यक सहयोग देने और मांगी गई जानकारी सटीक तरीके से उपलब्ध कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 2000 से अधिक परिवारों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग दिया गया है। जिन लोगों के पास खुद का आशियाना नहीं था, उन्हें इस योजना से काफी मदद मिली है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए विभिन्न किस्तों में 2.5 लाख रुपए तक की, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उनके बैंक खातों में दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लक्ष्य 2028-2029 तक बढ़ाया गया है। जिले में सुकन्या योजना बालिकाओं के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इसके तहत नवजात से लेकर 10 साल तक की बालिकाओं का बैंक खाता खोला जाता है। इसमें कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना तक का निवेश किया जा सकता है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। खाता खोलने की तारीख से 21 साल या बेटी की शादी के समय मैच्योरिटी राशि ली जा सकती है। जिले में 853 से अधिक बालिकाओं के खाते पोस्ट ऑफिस में खोले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत जिले में 21 मई को आवेदन शिविर लगाया जाएगा। रतन नगर नगर पालिका सभागार में ये शिविर लगेगा। राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक गणपत राम चौधरी ने बताया कि योजना के तहत पात्र आवेदकों को 3,000 रुपए महीने का लाभ मिल सकता है। वित्त विभाग ने श्रमिकों, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों और लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की थी। चूरू में पिछले दिनों प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर परिषद की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि शहर के अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर करीब 600 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किए गए। उन्होंने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और आम नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग पूरी तरह बंद करने की अपील की। इसके स्थान पर कपड़े, जूट और पेपर बैग के इस्तेमाल पर जोर दिया। चूरू में पिछले दिनों इनोवेटिव बूट कैंप आयोजित किया गया। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के आई स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर में इस

0: आयोजन में जिले भर के 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न सत्रों में विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का दक्षता कोर्स करवाया गया। भीषण गर्मी और लू की दौर से जिले भर में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर पानी के परंपरागत स्रोत टाके, जोहड़ और तालाब सूखने से पानी की समस्या हो रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला न चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कीनी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य में 5,000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला। सहकारी मॉडल माथे आधारित देश री पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर में आई शुरू भेला। और प्रदेश रा घनखर हल्का माए लू रा हालात, आवता 3 दिन लू रा थपेड़ा लागता रहवन री शंका। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट जनगणना 2027 रा तहत जातिगत गणना करावन रा केंद्र सरकार रा फैसला ने चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कर दीनी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत री सदारत वाली पीठ कहो के पिछाड़ी तबकारी जनता रा भला सारू जतन करण बाबत सरकार ने वारी तादाद री जानकारी भेवणो जरूरी है। पीठ कहो के ओ मुद्दों सरकार रो नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आवे है। इन विच प्रदेश में जनगणना 2027 रा तहत मकाना री लिस्ट बनावण रो काम चाल रियो है। पाली जिला रा दूर दराज हलका और ढाणिया में प्रगणक घर घर जार HLO ऐप रे जरिए जानकारी भेड़ी कर रहा है। ये डिजिटल सर्वे रा तहत हर मकान री असली लोकेशन दर्ज करी जा रही है और जनताओं 33 सवालों रा जवाब लिया जा रहा है। प्रशासन जनताओं प्रगणका ने सही और पूरी जानकारी मुहैया करावन री अरज कीनी है। देश रा न्यारा न्यारा हलका माए लाडला दिना रेलगाड़ियां माए लाई लागण रा वाकया माए सामाजिक तत्वां रा शामिल भेवन रीठा पड़ी है। आमाए राजस्थान री 2 घटनावां शामिल है। पाली रा अमरपुरा स्टेशन के नवी एक घटना माए एक अनजान जना रे एक डिब्बा माए कपड़ों बाड़बा री कोशिश करण रीठा पड़ी है, जिन कारण वहाँ डिब्बा माए लाई लाग गई ही। कोटा माए राजधानी एक्सप्रेस माए लागी लाई रेल रा घुसलखाना उसरू भेवन री शंका है। रेलवे मुसाफिरा ने सावचेत रहता थका शंका लायक हरकत री जानकारी रेलवे रा हेल्पलाइन नंबर 139 माथे संपर्क करण री राय दीनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल रा तहत आज बांसवाड़ा रा चुड़ादा गांव माए रात्रि चौपाल लगार गांव वाला सागे बातचीत कर रहा है। मारो काल समारह गांव रो पैदल दौरों कर लोगों बातचीत करण रो कार्यक्रम है। ध्यानजोग है कि ग्राम विकास चौपाल रे जरिए मुख्यमंत्री गांव वाला सागे सीधी बातचीत कर सरकार कानियों जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां रो फायदों मिलन रे बारे में जानकारी हासिल कर रहा है। वारो काल डूंगरपुर जिला रा 84 हलका रा धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल लगावन रो कार्यक्रम है। पेट्रोलियम कंपनियां रे मुजब प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रो जरूरी स्टॉक मौजूद है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज तेल कंपनियां रे नुमाइंदा सागे पेट्रोलियम उत्पादों और LPG री उपलब्धता रे बारे में मीटिंग कीनी। कंपनियां रा राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता बतायो कि सरकारी तेल कंपनियां प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति कर रही है। श्री गुप्ता जनताओं घबराहट माए गैर जरूरी ईंधन भेड़ो नी करण री अरज कीनी। इन बीच प्रदेश में राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहो है कि दूजा देशों री तुलना माए भारत माए हालात बेहतर और काबू माए है। व जनताओं जरूरत रह मुजब तेल री खरीदी करण री अरज कीनी।
2: कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए और मैं आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत।
1: प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र में आए अब बच्चा ने उपमारी ठोड़ पौष्टिक न्यूट्री पुलाव खिलायो चावेला। उप मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी आज जयपुर में नुआ न्यूट्री पुलाव रो नमूनो चाख्यो। वे कहो कि प्रदेश रा बच्चा सारू ओ पुलाव स्वाद रे मुजब है। उप मुख्यमंत्री इणना बेगोई आंगनबाड़िया में बच्चा ने दिया जावन वाला भोजन में शामिल करण बाबत कहो। दिया कुमारी बच्चा ने नाश्ता माई मुरमुरा रिठौड़ी समान दर वाला दूजा बेहतर और पौष्टिक आहार रो विकल्प तैयार करन रा हुकम ही दीना। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य में करीब 5,000 नुआ मकान बनाया चावेला। इन तहत हर पात्र जना ने खुद रो पक्को मकान बनावण सारू केंद्र सरकार री ओर 1.5 लाख और राज्य सरकार री ओर 1 लाख रुपया री सब्सिडी दी जावे है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 सारू बनाई जी राज्य स्तर री सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी री मीटिंग में अहलकारों जानकारी लीनी। ई योजना रा तहत 125,60,00,000 रुपया री सब्सिडी दी जावेला। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण रा तहत न्यारी न्यारी ठोड़ा साफ सफाई रा खास अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर में नगर निगम री ओर खास गेला और जनता रे आवण जावण री ठोड़ा भीता माथे राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण ने बचावण रा संदेश जुड़ी चित्रकारी करी जा रही है। पाली माई शहर ने रूपाड़ो बनावण सारू नगर निगम री ओर सिटीजन फीडबैक अभियान चलायो जा रो है। निगम रा कमिश्नर नवीन भारद्वाज जनताओं QR कोड स्कैन कर फीडबैक देवण री अपील कीनी है। जयपुर माए सहकारी मॉडल माथे आधारित भारत टैक्सी सेवा री शुरुआत आवता महीना रा पहला सप्ताह माए करण रो प्रस्ताव है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक आज जयपुर रा अपेक्स बैंक माए राखी जिया सारथी संवाद कार्यक्रम माए आ जानकारी दीनी। दिल्ली मुंबई और लखनऊ पाछे अब जयपुर माए जनता ने किफायती और सुरक्षित सफर रो सुबितो मुहैया करावण सारू आ सेवा शुरू करी जावेला। श्री दक कहो के ई सेवा माए कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं वेला जिन्हों ड्राइवरा ने गैर सरकारी कंपनियां री मनमानी छुट्टी मिलेला। पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल रा गंगापुर सिटी रामगंज मंडी और गुड़ला टेसना रे जंक्शन भेवन रो ऐलान कीनो है। रेलवे रा अहलकारा ने मुजब अब 8 टेसना रा नाम सागे जंक्शन जोड़ियो चावेला। इन सारू जरूरी बदलाव रा हुकम जारी कर दिया गया है। अरब मौसम प्रदेश में पड़ रही जबरदस्त गर्मी बीच घनखट होना दिन री बगत पारो 42-46 डिग्री सेल्सियस बीच है जबकि रात री बगत 26-31 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो जा रियो है। जनता सागे जिनावरा और परिंदा नई गर्मियों बचावन सारू न्यारी न्यारी ठोड़ा पीवण रा पानी री व्यवस्था करी ची है। मौसम विभाग आवता दिना कई ठोड़ा लू बाजण सारू चेतायो है। ई बीच लाडला 24 घंटा में श्रीगंगानगर 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे राज्य में सबू गर्म ठोड़ रहो। बीकानेर में रात्रि भगत सबू बत्तो 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी जियो। अलवर कोटा चित्तौड़गढ़ फलौदी बीकानेर और चूरू में बत्तों बत्तो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। राजधानी जयपुर में 42.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नापी जियो। ई बीच गर्मियों बचाव सारू प्रशासन री ओर न्यारी न्यारी ठोड़ा छाया रा प्रबंध करी जिया है और सड़क माथे पानी रो छिड़काव करियो जा रियो है। और ब्यूरो माणा खबर नवीस हूँ।
3: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल में लू रा मरीजों रा इलाज जुड़िया सगड़ा जरूरी इंतजाम करण रा हुक्म दीना है। भरतपुर जिला में सेवर रा सरसों अनुसंधान संस्थान री ओर मेरा गांव मेरा गौरव अभियान रा तहत रणधीरपुर गांव में किसान संगोष्ठी राखी ची। इनमाए कृषि वैज्ञानिक किसाना ने खेती बाड़ी रा बेहतर तरीका, प्राकृतिक खेती और मिट्टी रो स्वास्थ्य बेहतर बनावन रे बारा माए जानकारी दीनी। खेती बाड़ी रा जानकार किसाना ने मिट्टी री ताकत बचार राखण सारू जैविक खाद, गोबर री खाद और ढेंचा सरीखी हरी खाद काम लेवन बाबत कहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर ओ जू सुन ले राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। संस्कृति मंत्रालय वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता सारू प्रविष्टियां जमा करावन री आखिरी तारीख 31 मई ताई बधा दीनी है। आहोड़ फिल्मा बनावन वाला रचनाकारा और जनता ने समकालीन प्रारूपा रे जरिए वंदे मातरम री भावना ने नुआ सिराऊं पेश करण री प्रेरणा देवे है। होड़ रील्स एआई आधारित फिल्मा और नानी फिल्मा री श्रेणिया माए फैला। हनुमानगढ़ जिला में तलवाड़ा कने भूरानपुरा गांव में स्वास्थ्य विभाग नकली दूध बनावन रो कारखानों पकड़ियो है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा बतायो कि मौकाओं मोटी तादाद में नकली दूध और अमानक सामग्री नष्ट कराई ची। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला न चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कीनी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रा तहत राज्य में 5000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला। सहकारी मॉडल माथे आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर में आई शुरू फैला। और प्रदेश रा घनखर हलका में लू रा हालात, आवता 3 दिन लू रा थपेड़ा लागता रहवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
4: रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन,
5: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
6: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।
8: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: आपने फना फिल्म में महालक्ष्मी को सुना, संगीत जतिन ललित का था बोल प्रसून जोशी के। अब सुनिए भारतीय सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: ओ चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: सेना।
1: अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का था। अब सुनिए इस्माइल दरबार के संगीत निर्देशन में महबूब का लिखा गीत, आवाजें कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत और डोमिनिक की। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ, शाम जलाओ,
3: देवदर्शन धूप।
2: सुबह जलाओ, शाम जलाओ,
3: देवदर्शन धूप।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

अभी आपने लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को फिल्म मिस्टर नटवरलाल में सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन। और अब जयमाला में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और फिर वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम में।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दैमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141256969 पर।

फिल्म में अलका याग्निक और कुमार सानू को सुना। संगीत नदीम श्रवण का था, बोल समीर के। और अब यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश शान फिल्म से। इसे गाया है आशा भोसले ने, संगीत तैयार किया है आरडी बर्मन ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर बाद सुनेंगे अगला कार्यक्रम इंद्रधनुष।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

अभी आपने राग यमन जी चोटी पर आधारित गीत सुना, अब सुनिए राग भैरवी पर आधारित गीत। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, रवि के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है प्रेम धवन ने।

ये था राग भैरवी पर आधारित गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं राग रागेश्री पर आधारित एक युगल गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, संगीत रवि का, बोल असद भोपाली के।

सुरीला गीत आधारित था राग रागेशी पर। इसी के साथ ही राग अनुराग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन।

0: आज के कार्यक्रम में सुनिए शोभा रस्तोगी का लिखा प्रहसन खरीदा हुआ दुख।
1: अम्मा अम्मा जल्दी आओ, दाल जल रही है।
2: अम्मा की बच्ची, तू बर्तन भी नहीं उतार सकती?
3: खाने को चाहिए मन भर, लेकिन काम के नाम पर नहीं मरती है। दाल एकदम लग गई, अब खाना नमक से रोटी।
4: तुम्ही ने तो कहा था कि खाने पीने की चीजें ना छुआ करो, फिर क्यों डांट रही हो?
2: डांटू नहीं तो क्या पूजा करूं?
3: दुनिया भर का मैल लपेटे रहती हाथों में, इसलिए मना किया था। सांसी से बटलोई तो उतार ही सकती थी, लेकिन तुम लोग तो मेरा खून पीने पर उतारू हो। जैसी तू वैसी मुन्नी, जैसा धीरू वैसा वीरू, इसी से कोई सहारा नहीं।
4: सबका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? जब देखो तब डांटती रहती हो।
5: हो गया सवेरे सवेरे महाभारत शुरू। कभी तो बच्चों से मीठे बोल बोल दिया करो शारदा।
3: हाँ हाँ, सारा दोष मेरा ही तो है, अपने बच्चों के लक्षण नहीं देखते।
5: तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बच्चे मेरे ही हैं, तुम्हारे नहीं। लाओ थाली परसो, दफ्तर को देर हो रही है।
3: दाल जल गई, सब्जी है नहीं, नमक से रोटी खाओ तो दे दूं।
5: रोज कोई ना कोई टोटा ही पड़ा रहता है, गृहस्थी चलाने का जरा भी शऊर नहीं।
3: मांग जांच कर जैसे गृहस्थी चलाती हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरी जगह कोई और होती तो भूखा रहना पड़ता।
5: ठीक है देवी जी, सवेरे सवेरे मूड ना खराब करो। चुन्नी, स्कूल नहीं गई तुम?
4: नहीं।
5: क्यों, इम्तिहान सर पर है?
3: तुम्हें आज पता चला? 4 दिन से चुन्नी पढ़ने नहीं जा रही है, कहती है टीचर जी डांटती हैं।
5: मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बात है चुन्नी, क्यों डांटती हैं टीचर जी?
4: हमारे पास यूनिफॉर्म जो नहीं है, टीचर जी कह

0: को सर पर चढ़ा कर बिगाड़ रखा है, देख लेना भीख मांगेंगे भीख।
1: मैंने बिगाड़ रखा है? किसी के पास किताब नहीं, किसी के पास कॉपी नहीं, किसी के पास साफ सुथरे कपड़े नहीं, ये मेरी गलती है। बच्चे दिन भर गली में लफंगों की तरह खेलते रहते हैं, ये मेरा दोष है।
0: नहीं जी, तुम्हारा क्यों होगा, सारा दोष मेरा है। शादी क्या की, जंजाल में फंस गया, जितना कमाओ कम है, जब देखो तब कंगाली। ठीक है, मैं जा रहा हूँ दफ्तर।
1: टिफिन ही लेते जाओ।
0: कोई जरूरत नहीं है, कैंटीन में खा लूंगा।
1: ये क्यों नहीं कहते, चटपटा खाने का मन है। ठीक है, पूरी तनख्वाह कैंटीन में ही उड़ाओ, बीवी बच्चे भूखे नंगे रहे तुम्हारी बला से।
0: ऐसा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं कैंटीन में पैसे बहाता हूँ, पूरे पैसे तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ, तब तो ये हाल है, अगर उड़ाने लगूं तो जीना दूभर कर दो। लाओ टिफिन दो, अगर घर में हो तो प्याज और नमक रख देना, नहीं तो सूखी रोटी ही खा लूंगा।
1: आपका टिफिन तैयार है।
2: थैंक यू शीला डियर, कुछ साग सब्जी भी रखी है, या नमक और प्याज से ही काम चलाना पड़ेगा।
1: लगता है आप भी मिस्टर और मिसेस वर्मा की बातें सुन रहे थे।
2: अरे भाई बहरे तो है नहीं, पड़ोसी की बातें सुनाई पड़ ही जाती हैं। अब ये बात दूसरी है कि हम उनकी कड़वी बातें सुनते हैं और वो लोग हमारी मीठी मीठी बातें हैं। वर्मा जी जरूर अपनी श्रीमती जी से कहते होंगे कि तुम्हारी जुबान हरी मिर्च है और शीला जी की जुबान बंगाली रसगुल्ला।
1: वर्मा जी ना भी कहते हो लेकिन आपने तो कह ही दिया, तभी तो मैं कहती हूँ कि आप डॉक्टर ऑफ फ्लैटरी यानी डॉक्टर ऑफ चापलूसी हैं।
2: इस डिग्री के लिए शुक्रिया मैडम, बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जिंदगी में खुशी की कुंजी है घर वाली की चापलूसी।
1: ये आपके बड़े बूढ़े कह गए होंगे, हमारी बड़ी बूढ़ी कह गई है अगर सुखी जीवन चाहती हो तो चापलूस पतियों से सावधान।
2: ये तो वही बात हुई कि फाटक पर जैसे बोर्ड टंगा हो कुत्तों से सावधान, गए शौहर न हुआ दुम हिलाने वाला।
1: इसका फैसला बाद में होगा, पहले दफ्तर जाकर अपने साहब के सामने दुम हिलाइए, अगर देर हो गई तो बेकार ही झूठे बहाने बनाने पड़ेंगे।
2: तुम्हारा मतलब है जब ओवरटाइम करने में मुझे दफ्तर से घर आने में देर हो जाती है तो मैं तुमसे यहाँ आकर झूठे बहाने बनाता हूँ।
1: हाय, जब तुम नाराज होते हो तो कितने अच्छे लगते हो।
2: और तुम इसलिए मुझे जानबूझकर चिढ़ाती हो।
1: चिढ़ाने में मजा आता है ना।
2: वाह रे तुम्हारा मजा, अब अगर मैं भी तुम्हें।
1: अरे अरे क्या करते हो, छोड़ो, अगर पिंकू आ गया तो।
2: पिंकू आज स्कूल नहीं गया क्या?
1: गया क्यों नहीं।
2: फिर तुमने?
1: डियर इसी को प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, पिंकू का नाम ना लेती तो तुमसे छुटकारा कैसे मिलता।
2: ठीक है, इस वक्त तो बच्चा खा ही गया, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं शीला।
1: आपकी बात का कभी बुरा माना है जो आज मानूंगी।
2: पिंकू पर जरा कंट्रोल रखो।
1: क्या हुआ, क्या स्कूल से कोई शिकायत आई है?
2: नहीं नहीं, लेकिन अगर वो वर्मा जी के बच्चों के साथ इसी तरह खेलता रहा तो स्कूल से भी शिकायत आने लगेगी, धीरु वीरु गंदी गंदी गालियां भगती हैं। अगर अपने पिंकू ने भी सीख ली तो
1: क्या करूं, आप ही बताइए, कई बार पिंकू को मना कर चुकी हूं, अब स्कूल से आकर घर में बंद होकर तो बैठा नहीं रह सकता है,
2: कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो तुम मिसेस वर्मा से कहो ना कि उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं।
1: आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वे जानती नहीं, कई बार इशारा कर चुकी हूँ, वो कभी वर्मा जी को दोष देती हैं और कभी अपने भाग्य को कोसती हैं। बाबा रे बाबा, उनके साथ उनके बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं तो यही डर लगा रहता है कि तोड़फोड़ न करने लगे। मैंने आपको बताया नहीं, एक बार धीरू पिंकू की पेंसिल रबर ही चुरा कर ले गया था।
2: तुम साफ क्यों नहीं कह देती हो कि बच्चों के यहाँ न लाया करे?
1: कहना ही पड़ेगा, मैं तो कहती हूँ कोई और मकान देखो, कम से कम पड़ोस तो अच्छा मिले।
2: मकान छोड़कर भागना समस्या का नहीं है शीला, अच्छा हो हम अपने पड़ोसी यानी मिस्टर वर्मा के परिवार को ही सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें।
3: क्या हो रहा है शीला बहन?
1: पिंकू के लिए शर्ट सिल रही हूँ। आओ बैठो।
3: तुम तो सिलाई कढ़ाई बुनाई हर काम में होशियार हो, तुम्हें फुर्सत भी रहती है, हमें तो दम लेने का भी वक्त नहीं मिलता।
1: ऐसा क्या काम है तुम्हारी गृहस्थी में शारदा बहन?
3: अब एक हो तो बताऊं, हम तो ये जानते हैं कि सुबह से उठकर रात तक कमर सीधी नहीं कर पाते।
1: घर के काम में बच्चे हाथ नहीं बटाते?
3: नहीं जी, उल्टे काम बढ़ाते हैं। अब बहन इतनी समय तो है नहीं कि नौकरानी रखें मेहरी रखें।
1: मेहरी बहरी तो हमारे यहाँ भी नहीं है, झाड़ू बुहारू भी खुद ही करती हूँ। पिंकू स्कूल गया, गुप्ता जी दफ्तर गए, बस खा पी कर बर्तन मांजे, चौक

0: कपड़ा धोया और उसके बाद फुर्सत ही फुर्सत।
1: अपने अपने भाग्य की बात है बहन,
0: हमारे भाग्य में आराम है ही नहीं। अब आज ही किलो नास पीटी चुन्नी के मारे दाल जल गई। वर्मा जी भूखे दफ्तर चले गए। अब हमसे तो सूखी रोटी चबाई नहीं जाती। अचार डाला था सो बच्चों ने गंदे हाथों से छू छू कर बर्बाद कर डाला।
2: कोई बात नहीं, अचार हमारे यहाँ है।
1: इसीलिए तो आई हूँ बहन। तुम भी सोचती होगी कि अच्छी पड़ोसी मिली, रोज कुछ न कुछ मांगने आ जाती है। मगर क्या करें बहन, बिना मांगे काम भी तो नहीं चलता।
2: नहीं नहीं बहन, एक दूसरे के सुख दुख में काम ना आए तो पड़ोसी कैसा। अच्छा बताओ, आम का अचार दूं या नींबू का।
1: तुम्हारा मिर्च का अचार तो कभी भूल ही नहीं सकती। शीला बहन, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा तीनों तरह का दे दो।
3: तुम यहाँ आकर बैठ गई अम्मा, वहाँ मुन्नी और धीरू लड़ रहे हैं।
0: लड़ रहे हैं तो अम्मा क्या करें, अम्मा का खून पीकर चैन आएगा तुम लोगों को।
2: मैं अभी अचार ला रही हूँ, एक मिनट में।
3: अम्मा ये मशीन कितनी अच्छी है, जरा चलाकर देखें।
0: अरे अरे, ये क्या कर रही हो चुन्नी, सुई टूट जाएगी।
2: तुमने भी मना नहीं किया शारदा बहन।
1: हम क्या जाने कि मशीन छूने से टूट जाएगी, बच्ची का मन था सो जरा चला ली। चल चुन्नी,
2: प्लेट खाली करके जरा जल्दी ही भिजवा देना।
0: घबराओ नहीं बहन, शाम को जरूर भेज दूंगी।
2: ये भी अच्छी रही, दो तो आफत न दो तो आफत। कभी आटा मांगेगी कभी दाल, कभी मसाला मांगेंगी कभी घी। समझती है हमारे यहाँ मुफ्त का आता है, अच्छा पड़ोस मिला है। चलो मशीन तो ठीक है।
3: आंटी जी ये प्लेट
0: ले आई। अरे ये तो टूट गई।
3: अम्मा अचार लेकर गई तो मुन्नी धीरू और वीरू छीना झपटी करने लगे सो अचार भी गिर गया और प्लेट भी टूट गई। माने प्लेट भेजी है, थोड़ा अचार और मंगाया है।
0: कह देना अचार अब नहीं है और ये प्लेट भी ले जाओ।
3: अच्छा आंटी, हम इन टुकड़ों से खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे।
4: मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुप्ता जी, आज बच्चों ने आपकी प्लेट तोड़ डाली।
5: वर्मा जी ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे भाई बच्चे हैं, तोड़ फोड़ तो करते ही रहेंगे, और फिर प्लेट थोड़ी है कोई।
4: ये आपकी शालीनता है गुप्ता जी, सच मानिए मैं तो इन बच्चों से तंग आ गया हूँ।
5: शायद बच्चों का इतना दोष नहीं जितना आप समझते हैं।
4: क्या मतलब?
5: मतलब बाद में बताऊंगा, पहले चाय पीजिए। अरे भाई शीला, चाय में क्या देर है?
0: एकदम तैयार है, लीजिए।
4: अरे आप तो चाय के नाम पर पूरा खाना ले आई भाभी जी, बर्फी समोसे दाल मोट पकौड़ी।
2: ऐसा तो कुछ भी नहीं है वर्मा जी, दफ्तर से आने के बाद नाश्ते में कुछ तो होना ही चाहिए।
4: काश हमारी श्रीमती जी भी ये समझ सके। नाश्ते की कौन कहे, हमें तो कभी कभी चाय भी नसीब नहीं होती।
5: लीजिए चाय पीजिए। वर्मा जी हम लोग बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहते थे। देखिए वैसे तो आपका घर है, आपके बच्चे हैं, लेकिन पड़ोसी होने के नाते
4: कहिए कहिए, निसंकोच कहिए गुप्ता जी।
5: आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं।
4: जानता हूं, वो स्कूल नहीं जाते, गली में खेलते रहते हैं, गालियां बकते हैं, चोरी करते हैं। मुझसे कुछ छुपा नहीं है गुप्ता जी, अब मैं क्या क्या देखूं, शारदा बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती।
2: सिर्फ शारदा बहन को दोष देना ठीक नहीं, अकेली माँ क्या क्या कर सकती है। अगर पिंकू के भले बुरे पर ये भी निगाह न रखे तो।
5: मैं भी ये कहने वाला था।
4: ये न समझे गुप्ता जी कि मुझे बच्चों की चिंता नहीं है, मगर समझ में नहीं आता क्या करूं। सुबह होते ही घर में कला शुरू हो जाती है, इसका असर बच्चों पर तो पड़ेगा ही।
3: बाबूजी अम्मा बुला रही है, धीरू ने मुन्नी की कॉपी फाड़ डाली, मुन्नी धीरू को मार रही है।
0: कोई बात नहीं, जरा अम्मा को यही भेज दो, कहना आंटी जी ने बुलाया है।
2: लो चुन्नी ये दाल मोट लो, सब लोग मिल बांट कर खाना, लड़ना नहीं।
3: आप बहुत अच्छी आंटी जी, अम्मा हमें कभी कोई अच्छी चीज खाने को नहीं देती।
4: देखा आपने, ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी बच्चे छोटी छोटी चीज के लिए नदी दे रहते हैं।
5: आपने कभी सोचा है वर्मा जी ऐसा क्यों?
4: रोज कोई ना कोई बच्चा बीमार ही रहता है, सारा बजट गड़बड़ा जाता है, शारदा को भी ढंग से गृहस्थी चलाने का शऊर नहीं।
0: मेरी बुराई के अलावा और कुछ आता है तुम्हें? शिकायत तो मुझे होनी चाहिए कि माँ बाप ने ऐसे खूंटे से बांध दिया जहाँ ना खाने पीने का सुख है ना पहनने ओढ़ने का।
2: शारदा बहन दुख तो आप लोगों ने खुद खरीदा है।

0: हम लोगों के आंगन के बीच बस एक छोटी सी दीवार है। इधर और उधर में जमीन आसमान का फर्क क्यों है जानती हैं?
1: इसमें जानने को क्या है, सब पैसे की माया है। आप लोगों की आमदनी ज्यादा है और हम लोगों की कम।
2: ये आपका भ्रम है भाभी जी, मेरा और वर्मा जी का एक ही ग्रेड है। ये जरूर है कि थोड़ा बहुत ओवरटाइम में भी मिल जाता है।
3: ओवरटाइम तो मैं भी करता हूँ गुप्ता जी, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। बताइए मैं क्या करूं?
2: बड़े परिवार में खर्च ज्यादा तो होगा ही, समस्याएं रहेंगी ही। अगर हम लोगों की तरह आपका भी परिवार सीमित होता तो ये नौबत क्यों आती?
3: मैंने तो दो बच्चों के बाद ही सोचा था, मगर इनकी जिद।
1: हाँ हाँ, सारी गलती मेरी तो है ही,
0: जो हुआ सो हुआ, अब तो समझिए।
3: अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे भाभी जी।
2: चलिए, सुबह का भूला शाम को घर आ गया।
0: शारदा बहन, अब तुम बचत करना सीखो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, छोटे बच्चों की ट्यूशन करके कुछ न कुछ कमा भी सकती हो। आखिर सिलाई कढ़ाई बुनाई करके मैं कमाती हूँ या नहीं?
1: एक बार गृहस्थी की गाड़ी ढर्रे पर आ जाए तो।
2: गाड़ी लाइन पर आने में देर नहीं लगेगी भाभी जी, अब दोनों पहियों में पक्का मेल जो हो गया है।
4: अभी आपने सुना शोभा रस्तोगी का लिखा प्रहसन खरीदा हुआ दुख। निर्देशिका थी दुर्गा मेहरोत्रा। आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश जॉलियल बीट टू फिल्म से, आवाजें सुखविंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफ़ा और कादिर मुस्तफ़ा की, संगीत विशाल खुराना का, बोल जुनैद वासी के।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिस्तरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। अब सुनिए इस फिल्म में AR अमीन और अंजलि गायकवाड़ को इरशाद कामिल ने बोल लिखे हैं और संगीत तैयार किया है AR रहमान ने।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के शेष गाने इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141256969 6 पर।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए सुनते हैं शान और अनुष्का मनचंदा को फिल्म गोलमाल में। कुमार का इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत तैयार किया है प्रीतम ने।

और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश काबिल फिल्म से। आवाज़ जुबिन नौटियाल की, संगीत राजेश रोशन का, बोल मनोज मुंतशिर के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय

0: ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जूली फिल्म के गाने से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, संगीत राजेश रोशन का, बोल आनंद बख्शी के।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: लीजिए सुनिए अनिरुद्ध फिल्म में किशोर कुमार को। तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आपने एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुना। आवाज किशोर कुमार की थी, फिल्म का नाम था आराधना।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत
1: लग जा गले।
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: तेरे मेरे सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
2: याद रहे। ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

खामोशी द म्यूजिकल। अभी आपने इस फिल्म में अलका याग्निक और हरिहरन को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी जतिन ललित ने। और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाय गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराए, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी माँ कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोकनाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।
1: सर,

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित ये नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण और दूसरी ओर SL भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ। उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया BV कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ति, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊं?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।
0: दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्नाड को देखा है।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बलियु नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

चंदनंदु कलदल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्तचित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की।

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छायांकित कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है। तब
1: भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा। वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, आहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

0: प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना सुकून है इस प्रेम में।
1: बहुत दूर मुझे जा...

0: और अब छायागीत कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का ढलती जाए शाम प्रोग्राम यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार,

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:05 और 15 सेकंड का समय हुआ है। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में प्रातः 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।